0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो। ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: जिम्मेवार बने दूजे की सुरक्षा में निश्चित करे। ये ठीक है कि इंसान मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, इस विच कोई शक नहीं। जिहड़े चेन्स ने वो की ने, वो बंधना दे चेन्स असीं आप क्रिएट किए हुए ने। जदों सतगुरु दे उपदेश नाल जुड़दे हां, सतगुर सिख के बंधन काटे, सतगुरु ज्ञान नाल मनुख नूं सुचेत कर रहा है जिहड़े बंधन ने सोसाइटी दे, कूड़े बंध कूड़े बंधन कर्म कांड वगैरह है ऊंच नीच दे परम, इन्हां तों मुक्त कर। ते फिर क्योंकि सतगुरु मेहनत करन दी भी गल कर रहे, ते वो व्यक्ति जिहड़ा है वो दलिद्री नहीं बल्कि वो व्यक्ति हिम्मती हो जाता है। क्योंकि सतगुरु ने कहा ना, उदम करेंदियां जीव तो, वो व्यक्ति जिहड़ा है उसका जीवन जिहड़ा है अगर वो खुशहाल होना है तो वो उदम दे मार्ग ते होएगा। पर नाल उदम करदे आ उसने वैल्यूज नू भी नाल रखना, उदम करेंदियां जीव तो कमाउंदे आ सुख पुच। जे तैनू सुख की प्राप्ति करनी है तो कमाई कर उदम कर, पर नाल ही त्याग दे तू प्रभु। जे तैनू प्रभु अंदर की है अपने आप की पहचान ही प्रभु की पहचान है, त्याग दे तू प्रभु में। जो तू कंसंट्रेट करेगा एकाग्रता होगी, तेरी बिरती च एकाग्रता आ जाएगी तो तू उसकी उस लभ भी सकता। नानक उतरी चित ए तेरिया परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये मनोविज्ञानिक कल के प्रोग्राम से जिक्र किया सी कि गुरबाणी सानू जिस तरह अपना जीव विज्ञान की गल करते हैं, भू विज्ञान की गल करते हैं, मनोविज्ञान की गल करते हैं, गुरबाणी सानू मनोविज्ञान नाल भी जोड़ती है। गुरबाणी मनोविज्ञान दे नाल भरपूर है। जदों आपां कबीर साहब का यह शब्द सरवण कर रहे हैं, फ्रीदा बुरे का भला कर गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोगन लगे पले सब कुछ पाए, ये अपने आप विच एक मनोविज्ञानिक सच्चाई है कि जदों चिंतावां ही नहीं है, किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं है, कोई अपने अंदर किसी प्रति वैर नहीं है, तो अपनी जिहड़ी पॉजिटिविटी है वह खिड़ेगी। इस तरह मनुख जिहड़ा है वह पॉजिटिविटी दे नाल क्रिएटिविटी दे नाल जुड़ेगा। वो बहुत कुछ है निंदा चुगली, क्योंकि उत्थे जदों इह कहिंदे ना कि भी प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कर किरपा जिसके हिरदे गरीबी वसावे, नानक इहां मुकत आगे सुख पावे, जिसके अंदर निम्रता आ गई। गरीबी निम्रता है, वो व्यक्ति हर प्रकार दे वैर विरोध ईरखा इन्हां चीज़ां तो मुक्त हो गया, तो वो अपने आप ही उसने सुख की प्राप्ति कर ली। आओ अज इत्थे ही इन्हां विचारां नूं समाप्त कर दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਹਾਊਸ ਲੰਬਰ ਪੈਕੇਜ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਗਰਾਜ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਟਰ ਤੇ ਫੈਂਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 403-453-5555 ਯਾਨੀ 403-433-5555 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁੰਦਰ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 3501 23rd Street, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੈਲਗਰੀ ਚ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 102.7 FM ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ ਆਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਜਜਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਰ ਪਹੁੰਚੈ ਆਏ।

0: जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतगुरु जुगो जुग अटल, ताकत चावर शत्र जी दे मालक, दसा पातशाहियां दी आत्मक जोत, समुची मनुखता दे सांझे रहवर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत जी, सारे रसना पवित्र करो, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप सारे गुरु रामदास पातशाह दे दर ते आए हां, ते साडी मंग भी एहोई चाहिंदी है, तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दी जय बंदगी। हे गुरु रामदास सच्चे पातशाह, साडी झोली दे विच बंदगी दी दात पा दे, नितनेम दी दात पा दे, क्योंकि संसार चलो चली दा मेला है, ये शरीर जेड़ा नाशबंत है, बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कश तपना कियो, तीस बरस कश देवना पूजा, मेरी मेरी करते जन्म गयो, बारह साल तक बचपन की उम्र बालपन की उम्र मनी जाती है, बालपन नू जवानी खा जाती है, ते जवानी नू खालसा जी बुढ़ेपा खा जाता है, ते बुढ़ेपे तो बाद फिर मौत का आना तो अटल है, जरूरी नहीं कि बुढ़ेपे तो बाद ये मौत आवेगी, कई माता दे पेट विच ही गल सड़ जांदे ने, मर जांदे हन, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले, बड़े बड़े अहंकारी लोग माता दे गर्भ दे विच ही गल जांदे हन। खालसा जी ग्रंथां दे विच लिखिया होया है, जरा पाओ ना हो सकी जरा अवस्था माहे, भवसागर के तरन को तरन अवस्था आहे। जरा नाम बुढ़ेपे का है, बुढ़ेपे दे विच तेथों जरा जिन्ना भी अपा नहीं होना भवजल तरन वास्ते, क्योंकि बुढ़ेपे दे विच शरीर हड्डां दी मुठ्ठी हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिमें बाबा फरीद साहब ने कहा सी कि जदों मैं जवान हुंदा सी इन्हां पैरां नाल चल के वड्डे वड्डे पर्वत पहाड़ां ते चढ़ जांदा सी, अज बुढ़ेपा आ गया है, मेरा लोटा मंजे दे नेड़े पे है, परंतु मैथों चुकिया नहीं जा रहा, क्योंकि हुण नेड़े पिया लोटा ही सौ को लगदा है। अज फरीदा कुजड़ा सह कोहा थे ओ। सो इस करके खालसा जी जिहड़ी भवसागर नूं तरन दी अवस्था है, जवानी दी अवस्था ही है, जवानी दी उम्र दे विच जिन्ना नाम जप लवांगे, क्योंकि शरीर निरोग हुंदा है, ताकत हुंदी है, उन्ना ही चंगा है, यह नहीं भी बालपन च नाम नहीं जपना, ध्रुव ते प्रहलाद ने बालपन दे विच ही जपया, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपे हर जैसे, वह साडे लिए उदाहरण बन गए ने। इस करके जिन्ना लाहा लिया जावे उन्ना थोड़ा है, क्योंकि शरीर जेड़ा नाशवंत है। अज सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे विच्चों हुक्मनामा जो आया है, जो गुरु साहब का हुक्म है, बड़हंस राग दे विच तीसरे पातशाह गुरु अमरदास सानू कलयुग दे जीवां नू उपदेश दे रहे हैं, आओ प्रेम सहित सरवण करिए जी।
0: सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी वडहां।

ने गुरु की शरण तक ली। जेड़े गुरु की शरण विच आ गए, गुर राखे से उभरै, होर मर जमै आवै जाए, उभरे तो भाव तर जाते हैं संसार रूपी भवसागर विच्चों। जेड़े गुरु की शरण च आउंदे ने, जेड़े गुरु के शब्द का उटासरा तकते ने, होर मर जमै आवै जाए, जेड़े गुरु के शब्द का उटासरा नहीं तकते, होरना दे विच प्रीती लाउंदे ने, कोई हन्ने दी, कोई बन्ने दी, कोई पहाड़ां वाली रन्ने दी, ढोल ढमक्का सरवर दा, ऐसे मनुख बार बार जमदे हन, मरदे हन, टेढ़ियां जूनां च आउंदे जांदे रहिंदे हन, परंतु जिहड़े गुरु दी शरण च आ गए, ओह संसार रूपी भवसागर दे विच उहनां दे जीवन दा वेड़ा तर जांदा है।

बिना नाम तो खालसा जी शांति नहीं मिल सकती, पीस ऑफ माइंड मन की शांति नहीं मिल सकती। बिन नावै सुख न होई, होर मर जमै आवै जावै, होर जेड़े हन होरना दे विच प्रीति लाउण वाले द्वैत विच पए हुए मनुख बार बार जमदे ने, बार बार मरदे ने, ते अंत दे समय पछताउणा करदे हन। जदों अंत दा समा आउंदा है, जमां दी मार दा बड़ा भयानक दुख सहना पैंदा है। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओ नहीं सहया जाए, एक जो साधु मोहि मिले तिन लिया अंचल लाए। वख वख ग्रंथां दे विच दस्या होया है, जे 70,000 बिच्छू कट्ठा डंग मारे जम इक डंडा मारे एक बराबर है। बिच्छू इन्ना जहरीला हुंदा है, एक बिच्छू किसी दे डंग मार जे सुरत टिकाने नहीं रहन दिंदा। जे 70,000 कट्ठा डंग मारे किन्ना खालसा जी की हालत होवेगी। भाव के इन्ना जमां दी मार दा, जमां दे डंडे दा दुख है। सो जिहड़े तां गुरु की शरण तक लैणगे उभर जाणगे, भाव तर जाणगे संसार रूपी समुंदर चों। नहीं तां फिर जिहड़े भाई होरना नाल प्रीति लाउणगे, जिन्हां की द्वैत भाव जिन्हां दे अंदर है, वह मरणगे जमणगे ते अंत दे समें जमां दीआं मारां खांदे होए पछताउणगे, क्योंकि नाम तो बिना सुख

0: क्या दे मोह जाए अगे की मूह दिखाउणगीआं ओ जीव स्त्रियां, क्योंकि अवगण औगण कमाए ने इत्थे, औगण करन करके पछताउणा पवेगा जदों जमा दी मार पवेगी। दुखो दुख कमाए मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजै दुख खाए, बाणी च ऐसा भी वचन आउंदा। मनमुख है जिहड़ा मन दे पिछे चलण वाला, दुखां दा खेत है, दुख बीजदा है, दुख ही बढ़दा है। सो भाई जिहड़े औगणियारियां जीव इस्त्रियां हन, परमेश्वर दे नाम दी कमाई नहीं करदियां, ओह भरम दे विच भुल्लियां होईयां हन, अगे उहनां नूं पछताउणा पवेगा औगण करन करके। ते फिर दुखो दुख कमाए, फिर दुख ही प्राप्त होणगे, भाव जिहड़ियां जूनां प्राप्त हो जाणगियां।
1: नाम रतिया से रंग चलूला, फिर कै अंक समाए।
0: जिहड़ियां रूहां बंदगी वालियां नाम च रतियां हुंदियां ने ना, नाम दा रंग चलूला बड़ा गूढ़ा रंग है। नाम दा पहली गल तां हर किसे नूं चढ़दा नहीं, जे नाम दा रंग चढ़ जावे आरे दे दंदियां थले भी नहीं लहिंदा, खोपर तरवाए तो भी नहीं लहिंदा, बंद बंद कटवाए तो भी नहीं लहिंदा। नाम दा रंग हर किसे नूं चढ़दा नहीं, जे गुरु की कृपा हो जे जिहनूं चढ़ जावे। मस्त हाथियां नूं नाग नहीं मार के मत्थे च वापस मोड़ दंदे ने, जिन्हों नाम दा रंग चढ़ गया बिना सिर तो लड़के इत्थे पहुंचे, सीस नूं हथेली ते रख लिया। अनोखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी, वह इत्थे तक आए लड़दे लड़दे जालमां दे आहू लाउंदे हुए, जिन्हों नाम दा रंग चढ़ गया। हर किसी नूं चढ़दा नहीं। अरदास बेनती करिए गुरु अगे सच्चे पातशाह, सानू भी यह रंग चढ़ जावे, रंग चलूला पिर के अंक समाए। जिन्हों नाम का गूढ़ा रंग चढ़ जाता है ना, पिर नाम पति का, अंक नाम स्वरूप का है, वह जीव स्त्रियां पति परमेश्वर के स्वरूप में समा जाूप हो जा।
1: तिस जेवड अवर ना सूझाई, किस आगे कहिया जाए।
0: तिस जेवड अवर ना सूझी, होर कोई सूझदा ही नहीं, ओदे वर्गा रब वर्गा कोई होर है। जे कोई होर दुनिया का बंदा अपने अपना भला करता, कोई वो अपने ते एहसान करूगा, ताना मेना भी मार दू, मैं तेरे लिए ऐ कीता, फलाने समय मैं तेरे ना खड़िया। पर एक परमेश्वर है जिन्हों तिल जिनी भी तमा नहीं, तिल ना तमाए पाठ आउंदा है ना, एक तिल जिनी भी तमा नहीं, वह परमेश्वर सुख दिंदा है सानू, कदे भी ताना मेना नहीं मारदा। इस करके वह वाहगुरु के बराबर कोई नहीं। होर किहदे कोले जाके दुख सुख करिए, होर किसे कोले दुख सुख नहीं कर सकते, वह वाहगुरु के दर अगी कर सकते हैं, क्योंकि वह तो वड्डा कोई नहीं है।
1: सो सच्चा सच सलाहिया, जे सतगुर दे बुझाए।
0: जे सतगुरु साहब, जे सतगुर दे बुझाए, सतगुरु साहब कृपा करके सोझी दे देन, तां ओह सच्चे दे नाम नूं सलाउणा करींदा है।
1: जिनी सचड़ा सच सलाहिया, हां तिन लागौ पाए।
0: जिन्हां ने सचड़ा प्यारा वाहगुरु नूं सलाया, वाहगुरु नूं चेते करिया, उन्हां दे मैं पैरी पै जावां, उन्हां दे चरण पकड़ लवां मैं, जिन्हां ने सच्चे नूं सलाउणा करिया रब दे प्यारिया ने।
1: से जान सच्चे निर्मले, तिन मिलिया मल सब जाए।
0: ओ सच्चे हन, निर्मले हन, मैल तो रहत हन, कौन तिन मिलिया मल सब जाए। मल मैल नूं कहिंदे ने, जिहड़े नाम च रंगे हन वह सच्चे हन, उन्हां दा शरीर भी पवित्र है, ते उन्हां नूं मिलके मल पापा रूपी मैल लह जांदी है उन्हां दी संगत करके। मल बखेप अवर्ण तीन प्रकार दे मन ते पर्दे पए है, यह तिन्ने पर्दे लह जांदे ने जिहड़ा नाम च रत्ते होयां दी संगत करदा है। बुरी संगत तो बच के रहना है, चंगियां दी संगत करनी है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਿਲਿਆ ਮਲ ਸਭ ਜਾਏ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪ।

0: सच्चा मित्र कौन है? जिस होए कृपाल सोई बिद बूझा जी, ते गुरु की खुशी होगी उसे नूं पता भी सच्चा मित्र कौन है। सच्चा मित्र वाहगुरु का नाम है खालसा जी। सुखमणी साहब की 19वीं अष्टपदी का श्लोक पढ़ो, साथ ना चालै बिन भजन बिखिया सगली शार, हर हर नाम कमावना नानकेहो धनसार। हे भाई सच्चा साथी दरगाह का नाम है, बाकी तो सब कुछ ऐथी छड जाएगा। त्यार चलना सगल संपत, सारी संपत्ति प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस ऐथी छड जाएगा, पर जेड़ा नितनेम का बैंक बैलेंस नाल कट्ठा कीता वह जरूर नाल जाऊगा। काल सरपर जान काल नू अपने सिर ते आया जान। जेड़ा मनुख मौत नू नहीं भुलदा वह रब नू भी नहीं भुलदा, उहदे रब भी याद रहिंदा है। जेड़ा मौत भुल जांदा वह रब नू भी भुल जांदा, रब नू टप दसदा है। वह कहिंदा ईट एंड ड्रिंक वी मैरी फार शैल वी हैव टू डाई, खाओ पीओ कहिंदा मौजां डाओ, कोई रब नहीं कोई अग्गा नहीं कोई दरगाह नहीं, ऐशां करो। ते जिहदे मौत याद है उहदे वाहगुरू भी याद है, जिहड़ा मरना भुल गया वाहगुरू नू भी भुल जांदा है। फिर टेढ़ियां जूनां च तुरिया फिरदा है, गुरमंत्र ही नस जो प्राणी तिरघंत जन्म भ्रष्ट न, कूकरै शूकरै गर्द वै काकै सरपने तुलखलै। वह कावा कुत्तियां गढ़िया हुई जूना च फिर धक्के खांदा। फिर इस करके यह हालत ना अपनी होवे, आपां काल नूं सर पर जान सिर ते आया जानीए। एक सां आ गया दूजे की आस नहीं। हम आदमी हाँ एक दमी, जे दम आउंदा आदमी हाँ, जे दम ना आया स्वास ना आया मिट्टी की ढेरी है। सो हमेशा चेते रखना दम आ गया भाई आदमी हाँ नहीं मिट्टी हाँ, सब कुछ इत्थे छड के तुर जाएगा।
1: मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर पर मान।
0: मिथन मोह संसार के झूठे पदार्थां च तेरा मोह पै गया। दुरंत आसा, दुरंत तो भाव कठिन इच्छा होगी एक अंदर। झूठ सर पर मान जो है ना, सब कुछ इनू झूठ मन। संसार के पदार्थां दे मोह विच इन्ना अन्ना हो गया, अंदर कठिन इच्छा पैदा होगी। दुरंत तो भाव कठिन इच्छा भी मैं आ भी इकट्ठा कर ला, आ भी इकट्ठा कर ला। खालसा जी माया च रहिंदे हुए निर्लेप रहने, पदार्थां च रहिंदे हुए गुरु महाराज ने श्री दसम ग्रंथ च कहा, मेरे सिख नूं सिर मूंह बना के सन्यासी बन की लोड़ नहीं, मेरा सिख घर च रहिंदा ही सन्यासी है। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माहे उदासा, जत की जटा जोग को मज्जन नेम के नखन बढ़ाओ। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। मेरे सिख नू स्वाह मलन की लोड़ नहीं, मेरे सिख नू जटा बधाउण की लोड़ नहीं, मेरा सिख नाम रूपी बभूती मले, नाम रूपी बभूती मेरा सिख जटा बनावे। पर कादियां जत ते सत दियां जटा बनावे, एका नारी जती होए पर नारी धी भैन बखाणे, अपनी घरवाली तो बिना बाकियां नू धीआं भैणां मन्ने। खालसा जी यह इन्ना सौखा नहीं, कलयुग का समा है। यह गुरु अगे अरदास करिए, महाराज एक पापी मन पता नहीं कदों डोल जे, कृपा करो जत सत दी बख्शिश कर दिओ। यह गुरु अगे अरदास करिए, सतगुर सिख के बंधन कट है, गुरु सिख दे बंधन कटदा है कोई शक नहीं, पर गुरका सिख वकार ते हट है। जदों वकार छड्डू उदों वकार भाई आपां आप तो नहीं छड सकदे, मन बड़ा पापी है। फिर हल की है? हल तो फिर एको एक है, कबीर केसो कूकी है ना सोई है, सार रात दिवस के कूकने कबहू के सुने पकार। दिन रात अरदासा बेनतियां करदा रह, हे सच्चे पातशाह अंदरों बकार खत्म करो, बकार कढ़ो मैं पापी हां। कदे तां भाई तेरी पकार सुनेगी ना वाहिगुरू।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है यां तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
4: संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जोगेरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जोगेरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने।

श्वेत छतर सिर मुकट बेराजे, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकट बेराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डेरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डेरे नू। मत दे दी बेरे नू, मत दे दी है बालम बेरे नू। मत दे दी है बालम, ये संसार समझदा नहीं कंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं कंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मत दे दी है बालम बैरे। आत्मा अब रो रही है, परमात्मा से पुकार करी है कि मेरे को तो इस काल ने काल रूपी इस मन के साथ बांध दी, इसके साथ मेरा मेल कर दिया। इस काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा मन, आत्मा के साथ ये नकली मालिक बन गया इसका। मन की और आत्मा की खुराक अलग अलग। आत्मा की खुराक परमात्मा की भक्ति, धर्म पूर्ण करना, विनम्र रहना, और मन की वृत्ति बकवाद करना, बेमतलब अहंकार बनाना, रगाने सुनना, मांस खाना, शराब पीना, ताश खेलना और बकवाद, राजनीति में गप्पे मारना। और भक्ति करनी तो उल्टी करनी, अच्छी भक्ति नहीं करने का। अब जैसे कोई साधना कर रहा है, कोई सोमवार का व्रत रखा है और उसने कोई ना कह देना शनिवार का व्रत बहुत लाभ देता, वो शनिवार का भी शुरू कर देगा। और उसको कोई नौका दे वह ना मनसा देवी पर, और वहां एक धागा बांध जाओ ना हरि मनोकामना पूर्ण, वहां भी भाग लेगा। और कोई इसने नौका ना कहा जा सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, नौका ना वहां के दरिया है, और वहां तो दरका रहता मनसा देवी पर, पूरा मर 2500 आदमी मर गए पाछे उसके ऊपर है भगदड़ माच के। हर किता चक्कर कोई ना हरियाणा की तो कुत्ते की टांग टूट जाना आते जाते कुत्ते की टांग टूट गई। उसने भी चर्चा का विषय बना देंगे, विघ्न तैर दे। एक व्यक्ति किसी को न्यू कहना कहा जा सत्संग में चल लेंगे, हमारे वहां सत्संग बहुत अच्छा होता है और सारी व्यवस्था बिछे बिछाए गदर ले है ऐसी रजाई में, बिल्कुल ताजी रजाई, ऐसी सर्दी में देसी घी का खान पान सारा फ्री है, और चल वहां चलेंगे सत्संग सुनेंगे। नुको ना टाइम को ना। एक भगत बताओ था कैसे, मैं एक अपने मित्र गांव खाता, उसने कहा था कहा तो वहां सत्संग में चलेंगे 3 दिन का सत्संग, बोला ना टाइम को ना। इतने में एक व्यक्ति दूसरे ती बतावा था ना वहां कंपटीशन आ रहा, दूसरे गांव में कंपटीशन होया करो वहां, ये गाय को हर अग्नि गाणी हरियाणा के 5-6 पार्टी आ जाया करो, वो उस तो बढ़ कर वो उस तो बढ़ कर सुरीली आवाज से गाने गाते इकट्ठे, फिर उनको इनाम दिया जाता, उसमें कंपटीशन बोला। तो वो किसी और ने बतावा था, और जिसको उसने भगत ने कहा था चल सत्संग में, उस तो नाइट गया, उसने आप तो जाकर पूछा अरे किता रहा कंपटीशन कहाँ रहा है, अकवा फुलाने गांव में 5 किलोमीटर दूर वहां जा पहुंचा, रात तो रात का था फदड़ फदड़ 5 किलोमीटर साइकिल पर गया पैदल मर रहा, और वहां बैठे जाकर देवी ना बैठे ऐसे रेत के अंदर उड़े मूतें बालक,
और वहां सारी रात दांदरे काट के ऐसी बकवाद सुनकर खुश होकर गया और नू कह दिख चल सत्संग बना टाइम को ना कन्ना पे गटाल जा। आत्मा रो रही है कि इस मन ने यदि कोई अच्छी साधना पर लगाने की बात करता है तो यूं सुनता नहीं बहरा हो जाए और उल्टी साधना इसने बता दे खुश होकर करता है। पेट पलनिए चलते देखे नू ये खट्टू श्याम जी पर जावे या कोई और जाते हम भी जाते थे साला सर तो वहां देखे नू लेट लेट के कौन ही फूट जा बेचारे की और उनको एक नो कहते ना कहा जा वहां सत्संग में नो ना उड़ा के दरिया है वहां क्या रखा है उसके लिए बता रहे हैं। अब आत्मा रो रही है कि मैं तो दे दी बालम बैरे नू इस मन रूपी पति के इस बैरे के साथ मेरा मेल कर दिया संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझा समझदो गहरे नू आम आदमी कोई बता दे वह साधना शुरू कर दे और इस यथार्थ ज्ञान को प्रमाण के सहित बताया जाता कहते इसने ना माने और मर्दों से ती प्रीत लगावे जैसे को बाबा जी मर गया गांव में 100 साल पहले पूरा माथा टेकन जाएंगे मारा समाज की पूजा है और जिंदे संत ना पूछे आगे पूछते। अब जैसे कोई वैद्य था और बहुत अच्छा वैद्य था नब्ज पकड़ के दवाई देता था स्वस्थ कर देता था अब वो मर गया मृत्यु होगी उसकी यादगार बना दी एक प्रतिमा बना दी। अब कोई उस मर्द के पास वैद्य के पास मत्था टेक कर जाकर मैंने ठीक कर दे स्वस्थ कर दे अब नहीं कर सकता वह मूर्ति कुछ नहीं कर सकती ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा कहां मिले फिर वो नब्ज देख के वो दवाई दे तब रोग कटे। तो ऐसे ही संत ढूंढने पड़ेंगे वो संत बताएंगे नो कहे उन संता की तो मानते नहीं मुर्दों से ती प्रीत लगावे नहीं जाने सतगुरु मेरे नू उस संत को नहीं समझता जो हर तरह से हर महरम से परिचित है जो तत्वदर्शी है यानी पूरा खोजी है उसका स्वेत छतर सिर मुकुट विराजे और देखत ना उस चेहरे सबने निराकार निराकार पगाटा जोड़ रखे है विष्णु जी की पूजा करे मूर्ति बना रहे हर कोई नो कह कैसे भक्ति करता ध्यान मेडिटेशन करता हूं भगवान कैसा है वो तो निराकार है पर विष्णु जी की किस लिए पूजा करता जब भगवान विष्णु भगवान नहीं है। ऐसी बालका वाली छुरी थी हमारी बिना ज्ञान के कहते हैं श्वेत छतर उस परम पिता के ऊपर छतर है जैसे इस दास के ऊपर भगवान बना रखे है ये तो अपना आर्टिफिशियल है श्वेत छतर और शेर मुकुट शेर पे मुकुट है और देखत ना उस चेहरे में साकार है वो परमात्मा सतलोक के अंदर ये निराकार निराकार बताने में कैखे का पता नहीं इनका कोई अनुभव नहीं है। श्वेत छतर शेर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे ऊंची थलियां खेती वो ये भूल रहे नजडेरे यानी कितना क्यों गरीबदास साहिब जी किसान थे और किसान लोग उनके आसपास आ जाया करते थे उनको उसी ढंग से यानी आम व्यक्ति को ही उन्होंने ज्ञान दिया है लेकिन उस समय जब ये बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी उसी तरीके से समझाने की चेष्टा की है जिससे वो समझ सकते हैं कि भी तुम ऊंची थलियां पर जाना पानी की व्यवस्था वर्षा हो जा तो बीज डाला जा सकता है अगर वर्षा ना हुई तो बीज भी खराब उसमें डाला हुआ ऊंचे थलों पर और एक डहर होती है समतल जमीन होती थी पहले साधन वर्षा का ही होता था सिंचाई का तो वर्षा थलियों पर वर्षा हुई भी उस डहर में आके जल रुकता था और जिसमें ज्यादा जल वर्षा का रुक जाता था उसमें ज्यादा उपज होती थी और वो डहर उपजाऊ जमीन होती थी थलियों पर तो मनमाने एक मण भी ना हो एक एकड़ में वो तो एक दो मण हो जाए जब वर्षा ठीक होती रहे तो और डहर में हो जाए 40 मण 50 मण एक एकड़ में। तो कहते हैं तुम ऊंची थलियां यानी आन उपासना अन्य देवताओं की जो पूजा है वो ऊंची थली है और सतपुरुष परमात्मा की पूजा वो डहर है उपजाऊ स्थान है उसको तुम भूल गए जो घना धन दे यानी जिससे आपको अधिक लाभ। ऊंची थलियां खेती वो है ये भूल गए नज डहरे नू ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू जैसे कोई व्यक्ति
कोर्ट में मिल रहा है, किसी मित्र अपना कोई रिश्तेदार मिल जाता है कचहरियों में, और दोनों आत्मा हाथ में लाग रहे, और ठीक है रिश्तेदार धगा मौज हो रही है, कोर्ट में मौज का के मेड़ महादुखी व्यक्ति जा रहे कोर्ट में गिग्गी बंदी रहे, कदे आज गवा जा आज वो फलाना ना आवर कदे न्यू हो जा, और वहां भी नौका मौज हो रही है। कहते तुम कहन तक सीमित हो मौज की, अड़ा मौज नाम की चीज नहीं, आपकी तो ऐसी स्थिति है। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुए बांग पड़ी। जैसे किसी ने एक मन बांग घोट कर कुएं में डाल दियो, और उस कुएं के जलने से दूसरे आदमी पी ले, पीते ही उनकी एक जैसी शकल एक्टिंग है, ऐसे लड़खड़ा कर चलना और एंड वेंड बोलना। कहते इस काल ने इस त्रिगुणमयी माया की भांग गेर दी 21 ब्रह्मांड में, और इसने ही पी कर तुम टीटी बने फिरो फाज। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। जैसे कोई शराब पिए पड़ा था दोपहर जून के महीने में, हरियाणा राजस्थान का स्थान, और धूप में पड़ा और पसीने पसीना जागा रे हैं, और सारा रेत में बुरा हाल हो रहा, और उसको कोई उठाता है कि उठ भाई तू यहां दुखी हो रहा है और गर्मी बहुत सता रही है, चल तुझे वृक्ष के नीचे बैठाता हूं। वो कहता है जोड़ दे मौज आ रही है एक तरफ। तो आज हम इस स्थिति में, इस काल के लोक में, यहां पर किसी को सुख नाम की चीज नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री बन रहा है, एक पल की भी चैन नहीं है, तो सारी पृथ्वी का राजा है। यदि किसी को सुख भी है तो इस परमात्मा की भक्ति सत भक्ति से यहां भी सुख है, और फिर परम सुख स्थान को प्राप्ति होगी। ये संसार समझदा नहीं कहदा श्याम दोपहरे नु, इस काल के लोक में इतना कष्ट उठा रहे हो, इससे मौज मान रहे हो तुम। गरीब दासिये वक्त जाते है रोगे इस पैरे। ये मनुष्य जीवन एक बार आते छूट गया ना आपके, कहते कुत्ते की तरह रोया करो ऊपर न मुंह करके। गरीब दास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरे नो, ये मनुष्य जीवन ऐसे बर्बाद हो गया, वक्षत भक्ति बनी नहीं, परम संत मिले नहीं, तो रोया करोगे इस समय को याद करके। फिर परमात्मा कहते हैं फिर क्या बनेगा, आछे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के एक रह जो चिड़िया चुकी खेत। जिस लोक में हम रह रहे हैं यह लोक काल भगवान का है, और हम अपनी अज्ञानता के कारण इस काल के साथ इस लोक में आ गए हैं। जो हमारे पुण्य थे वो इसने समाप्त करवा दिए, जो हमारी पूंजी हम सतलोक से साथ लेकर आए थे वो स्वर्ग के अंदर इसने विनाश करा दिए, उसके बाद इसने हमें यहाँ पृथ्वी पर पटक दिया। ये एक कैद है, एक जेल है, यहाँ पर रोके रखने के विधि तरीके इसके भिन्न हैं, और यहाँ इस काल के जेल की 3 जेलर बना रखे हैं इस काल ने, जो हमें यहाँ व्यवस्थित रखते हैं, इनके अपने अपने एक एक विभाग बांट रखे, जिस कारण से हम यहाँ इतने अज्ञानी हो गए, हमें अपने मूल स्थान की याद भी नहीं रही। इस काल भगवान ने जिसको यहाँ ब्रह्म बोला जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, इस ब्रह्म ने कोरा अज्ञान प्रकाश करवा दिया, अज्ञान का प्रचार करवा दिया, यथार्थ ज्ञान को छुपा दिया परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने। इस काल को 5 वेद दिए थे, 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, उसको इसने समाप्त करा दिया, छुपा दिया, नष्ट कर दिया, और 4 वेद यहां प्रचार करवा दिए। वो 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्यामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में केवल ब्रह्म तक की ही साधना का वर्णन है,
और जानकारी पूर्ण परमात्मा की है, जो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, जो सबका मालिक है, जिसने सारी सृष्टि रची है। उस परमात्मा के विषय में भी अत्यधिक जानकारी है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि इन चार वेदों में केवल ब्रह्म तक की है। तो इससे सिद्ध है कि ये चारों वेद इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। ये अधूरा ज्ञान हमारे को दे दिया और हम इस अधूरे ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान मान के, और जैसा भी ऋषि महर्षियों ने निष्कर्ष निकाला अपने ही अनुभव से, उसी को आज तक हम सुनते सुनाते रहे। वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को वो स्वयं ही अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं। फिर वो पुण्यात्मा अन्य अपने साथियों को, भाई बहनों को वो यथार्थ ज्ञान कराते हैं। लेकिन काल के दूत, काल के द्वारा प्रेरित संत ऋषि महर्षि मंडलेश्वर आचार्य, ये उस भ्रमित ज्ञान से अधिक भ्रमित रखते हैं और वो प्रचारक ज्यादा होते हैं। परमात्मा से परिचित व्यक्ति, पुण्यात्माएं बहुत सीमित होती हैं। तो जिस कारण से वो यथार्थ ज्ञान जन साधारण तक नहीं पहुंच पाया, उसका मूल कारण ये रहा कि पहले सभी अशिक्षित हुआ करते थे। प्रत्येक युग में एक विधान बना दिया था इन ऋषियों ने, अपने आप ही एक विधान बना दिया कि ब्राह्मणों के बच्चे विद्या ग्रहण करेंगे, वो सदग्रंथों को समझेंगे और फिर उनका प्रचार, परमात्मा की महिमा अन्य जनता को वो बताया करेंगे। तो इस बात से सभी सहमत हो गए भी ठीक है, हम व्यवसाय करते हैं, अपना रोजगार में लगे रहते हैं, हमें इतना समय नहीं है पढ़ने का, अच्छी बात है। और जो परमात्मा की कथा प्रचार किया करते थे उनको वो अन्य वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण बनाए थे, एक ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण वर्ग केवल शिक्षा ग्रहण करता था, तीन वर्ण उन्हीं ब्राह्मण वर्ण से सुने हुए ज्ञान को ही स्वीकार करते थे और उनको दक्षिणा दिया करते थे। ये रूटीन अभी तक चलता रहा। अब वो जितने भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, गुरु थे, वो तत्व ज्ञानहीन थे, क्योंकि ज्ञान कहां से प्रारंभ हुआ? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के वंशज ब्राह्मण कहलाते हैं, वो ऋषि महर्षि कहलाए। और ब्रह्मा जी को स्वयं ज्ञान नहीं, ब्रह्मा जी स्वयं वेदों से अपरिचित, क्योंकि वेद, चारों वेद इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं, इनकम्प्लीट ज्ञान है। और ब्रह्मा जी ने उन्हीं वेदों को पढ़ा और समझा जो इनकम्प्लीट अधूरा ज्ञान है, और साथ में हठ योग भी करते रहे। तो ब्रह्मा जी से विष्णु जी और ब्रह्मा जी से ही शिव जी ने अध्यात्म ज्ञान को ग्रहण किया। अपुन आत्मा परमेश्वर की वाणी में आता है कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जिसके पास सच्चा ज्ञान हो, वो सत का साथी, और जिसके पास सत ज्ञान नहीं है, वो अधूरा ज्ञान है, तो वो सत का साथी यानी सत्संग नहीं रखता। परमात्मा कबीर जी ने अपनी वाणी बताया, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंधे सभी काल की डोरी। सुर देवता, नर आम व्यक्ति, और मुनिजन ये ऋषि महर्षि, कहते ये सभी काल की डोरी से बंधे हुए हैं, ये काल के ज्ञान से परिचित हैं, ये ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानकर ओम नाम के जाप का सिमरण ध्यान करते रहे, और कुछ एक ऐसे रहे जो केवल अपने निष्कर्ष से, अब ज्ञान कैसे बिगड़ा, वेदों में केवल ओम नाम है और एक परमात्मा की साधना की तरफ संकेत है, निर्देश है, फाइनल है कि एक ही भगवान है जो सर्वशक्तिमान है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होगा और वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, पाप कर्म नाशक है। साथ में ये भी लिखा है कि ओम नाम जो है ये
सिमरन करना चाहिए, ये ब्रह्म का जाप है। तो ऋषि महर्षि उसको ठीक से ना समझकर ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मानकर इस ब्रह्म को कहीं पर ब्रह्म बोलते हैं, कभी इसको कहीं पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं, कहीं अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, लेकिन ये ओम मंत्र केवल ब्रह्म का है। जिस कारण से उन्होंने साधनाएं करते हुए भी कुछ उपलब्धि नहीं हुई। फिर जब ओम नाम के जाप से हठ योग करने से प्रभु प्राप्ति नहीं हुई तो फिर विचलित हो गए। अपने अनुभव से बता दिया कि परमात्मा निराकार है, जबकि वेदों में और सदग्रंथों में और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ उन्होंने बताया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, लेकिन उनका तेज, उनके शरीर की जो चमक है वो असाधारण है, लेकिन है मनुष्य जैसा ही। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर ये उस साधना को छोड़कर अन्य साधनाएं करने लगे और जिसको जैसा भी अनुभव हुआ उसी को आधार मानकर उन्होंने अपना कोई इष्ट चुनकर साधनाएं करते रहे और काल के जाल में फंसे रहे।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नू 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
3: पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
4: अब आपको थोड़ी सी झलक देंगे श्रीमद् देवी भागवत से। यह श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इस पर आपको दिखाते हैं विष्णु जी को कितना ज्ञान था, ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान था। पृष्ठ 28 पर पहला सकल। ये नारद जी और व्यास जी जो इन पुराणों के राइटर हैं, व्यास जी ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं। नारद जी से व्यास जी पूछ रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी है। अब नारद जी के ज्ञान का भी पता लग जाएगा इसमें, ये विष्णु जी को देवा अधिदेव यानी भगवानों के भगवान जगत के स्वामी कह रहे हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु हैं। विष्णु जी को जगत गुरु कह रहे हैं कुन नारद जी, एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हैं? आप किस भगवान की पूजा कर रहे हो? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हो। ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग के सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब ये क्या बता रहे विष्णु जी के, मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं और फिर थोड़ा बहुत समय मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूं, फिर उसके बाद तप करके बैटरी चार्ज कर लेता है, ये कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेता है विष्णु जी, उस सिद्धियों को फिर समाप्त कर देता है, राक्षसों को मार कर पाप इकट्ठे कर लेता है, मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहां बताया मुझे विष्णु जी कह रहे, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, दुर्गा के उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में यानी मेरे धार्मिक नॉलेज में, स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, मुझे जितना ज्ञान है मेरी जानकारी में, इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्मा ब्रह्मा विष्णु और नारद और व्यास जी के ज्ञान का ये पर्दा उठ गया कि ना तो ब्रह्मा जी ने कह का पता भक्ति के बारे में, क्योंकि वो विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर सब देवों के देव जगत के स्वामी सबका मालिक बताकर उसकी उपमा कर रहे हैं, और विष्णु जी ने अपना वेद दे दिया कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं या घोर तप करता रहता हूं, घोर तप करके कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उन सिद्धियों के आधार से फिर राक्षसों का हनन करता है, हत्या करता है, और कहता है मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, दुर्गा मेरा इष्ट है, ये फाइनल गॉड है, मेरा अंतिम देवता है। अपुण्य आत्माओं, परमात्मा आज नहीं 600 वर्ष पहले कहा करते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी, ये सभी काल के बंधे हुए हैं, ये काल के से बाहर नहीं जा सकते, इनकी साधनाएं व्यर्थ है, इस काल के जाल में फंसे रहने की है। अब दुर्गा कहती है कि एक ब्रह्म की साधना करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। इसे सिद्ध है कि ना तो ब्रह्मा ने ज्ञान ना विष्णु जी को। आगे देखिए 562 पृष्ठ पर श्री संक्षिप्त देवी भागवत में सातवां स्कंद 562 पृष्ठ पे ये दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब ये तो पहले तो यहां तक तो अपने विषय बता रही, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी हैं, वही यह अक्सर ब्रह्म है। अब देखो यहां से कहन लगी थी या ब्रह्म के बारे में बताऊंगी, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, और ये क्या कह रही है, अक्सर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य है और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो और मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब क्या बताते हैं, महिमा तो गा रही है अक्षर ब्रह्म की और नाम बता रही है ब्रह्म का। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अभी सब उवा बाई बांध रहे हैं, यहां अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां केवल ब्रह्म का ओम नाम है बस। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातों को छोड़ दे, यानी मेरी पूजा भी छोड़ दो, दुर्गा कह रही है, और केवल उसी परमात्मा का जानो जिसका ओम नाम है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है, संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। जिस प्रकार इस आत्मा का ब्रह्म के जप के साथ ध्यान करो, ओम के, यानी उस आत्मा ब्रह्म का, ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। अब ये गुण तो गा रही है अक्षर ब्रह्म के और मंत्र बता रही है ओम ब्रह्म का, यह स्पष्ट कर रही है कि इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, यानी ओम नाम के जाप से। ये कह रही है कि उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहां रहता है, वह सबका आत्मा, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यह ब्रह्म लोक में रहता है यो ब्रह्म, और ओम नाम के जाप से उसके पास पहुंच जाओगे ब्रह्म लोक में। ये दुर्गा का ज्ञान है जो हिमालय को बता रही है, और विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता ने जानता ही नहीं। दुर्गा कह रही है कि उस कह रही है ब्रह्म का जाप करो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। उससे क्या होगा कि ब्रह्म लोक में चले जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी पुनरावर्ती में है, पुनरावर्ती यानी बार बार आने और जाने का जो चक्कर है। ब्रह्म लोक में गए प्राणी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, उनकी भी जन्म और मृत्यु होती रहती है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कल आपको दिखाया, उसमें लिखा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसकी ये पहचान है कि संसार रूपी वृक्ष के वो सभी अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार से विस्तार से बताएगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। उसके बाद फिर उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। गीता ज्ञानदाता कह रहा है, गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, को सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तुम परम शांति को, परम शांति जीव को परम शांति उस समय होगी जब इसका जन्म और मृत्यु का रोग कट जाएगा, और सतलोक के अंदर जाने के बाद वहां कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, और वहां जाकर के जरा और मरण दोनों नष्ट, युवा शरीर रहेगा और कभी मृत्यु नहीं होगी, राग द्वेष नहीं, बाहि बंटवारा नहीं, नेक आत्माएं होती हैं जो आपस में वहां झगड़ा भी नहीं होता, सब भरे भंडार है भगवान के दरबार में, कोई काम

सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके श्रवण करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता है वो ओम नाम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये तीन मंत्र का जाप, इसमें ओम भी इंक्लूड है। ओम तत् सत, ओम तो क्लियर है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ओम और तत् वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता है, सच्चा नाम बनता है सतनाम। सत शब्द जो सत है वो सार नाम है, वो सार नाम मिलकर तीन मंत्र का यू जाप इकट्ठा ही हो जाता है। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए उस तीन मंत्र के जाप का सिमरन करे, रटना लावे, तब उसका पूर्ण मोक्ष होगा। यानी व्यास जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु जी सर्वशक्तिमान सबसे उत्तम, विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता भगवान नहीं जानता, दुर्गा कह रही है ब्रह्म ही फाइनल गॉड, उसका ओम नाम ब्रह्म लोक में रहता है। और वेद और गीता जी, वेदों का सारांश है गीता जी, श्रीमद भगवत गीता वेदों का सारांश है, और उसमें बताया कि ओम नाम है ब्रह्म का, और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। आठवें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस जन्म मृत्यु को आते हैं, और ब्रह्म कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो जब पूर्ण मोक्ष चाहिए तय। उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, ना वेदों में वर्णित, ना गीता जी वर्णित, ना किसी अन्य ऋषि के पास ही ज्ञान, और वो तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही आते हैं। सतयुग के ऋषियों के ज्ञान, और वो ऋषि जी क्या ज्ञान रखते थे देखिएगा 414 पे। अब प्रसंग चल रहा है कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी, ये है छठा स्कंध संस्कृत देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, व्यास जी से पूछ रहे हैं। इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब व्यास जी के ज्ञान की पोल खुल लगी, वो नो कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे ज्ञाता थे, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, वह भी दुर्गा की पूजा किया करते थे और वेद के ज्ञाता थे। वेदों में और गीताजी में कितने भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था, धर्म की यही सतीची त्रेता में रही, परंतु कुछ हरास हो गया था। सतयुग की जो सतीची थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे ईव कलयुग के ब्राह्मण माने जाते हैं। ओ तेरा गजब हो, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण हो गया है, बन गया है। अब पुण्य आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले यह संघर्ष किया था, इस ज्ञान को यहां अपना एक बीज रूप में छोड़ गए थे, यथार्थ ज्ञान को। उस समय के इन नकली ब्राह्मणों ने, इन राक्षस रूपी ब्राह्मणों ने, दास नहीं कह रहा, देवी भागवत बता रही है कि कलयुग के ब्राह्मण सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षसों के समान है, और उन्होंने कैसा जुल्म किया परमात्मा के साथ, कबीर जी के साथ, जो हमारे को यथार्थ ज्ञान देने स्वयं भगवान आए थे, और उस ज्ञान को इन्होंने हम तक नहीं आने दिया। आप जी ने कल गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में पढ़ा था कि जो अन्य साधनाएं जो करते हैं, कोई ऐसी करता है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कुछ करता है, आध्यात्मिक मार्ग में जो वो लगे हुए हैं, वो अपनी अपनी क्रियाओं को, अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानकर कर रहे हैं, और उनको ये पता लग जाएगी पाप नाशक नहीं है तो उसी दिन छोड़ देंगे वो। तो उस तरह उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो स्वयं परमात्मा आए थे, स्वयं

परमात्मा आते हैं और वो जो ज्ञान देते हैं वो फिर अपनी मुखारविंद से उच्चारण करते हैं वो यथार्थ ज्ञान को, और उस ज्ञान के अंदर बहुत विस्तार के साथ कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए वो विशेष विस्तार से बताई गई है। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, फिर वो बताएंगे तेरे को यथार्थ ज्ञान। अपने आत्मा अब काल ने ये दूत भेजे थे इस बोली आत्मा और श्रद्धालुओं को मिसगाइड करने के लिए। उसको पता था कि कलयुग में परमात्मा ने कहा है कि हम अपना ज्ञान दे करके अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक ले जाएंगे। काल ने कहा था कि इस कलयुग में ऐसे कर दूंगा इनको, कोई भक्ति की योग्य नहीं रहेंगे, इतना ज्ञान ठोक दूंगा कलयुग के अंदर, इतने विभाजन कर दूंगा मानव के, अब 36 तो मजो बना दिए और ना जाने कितने नकली पंथ चला दिए। लेकिन परमात्मा को पता था कि वो सभी पंथों की अज्ञान की हम पोल खोल देंगे, और जब जिसकी पिटारी में जिसकी बोरी में जिसका माल होगा वो खुलकर सामने आ जाएगा और वो बढ़िया माल साथ में होगा, डेरी लगा दी जाएगी, तो अपने आप ही समझ जाएंगे यू माल अच्छा है यू गलत है, ग्रहण कर लेंगे। और इस युग में शिक्षा देना परमात्मा कबीर जी के लिए अनिवार्य था, और शिक्षा का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि इसमें ये बेईमान बनाती है जीव को, विकारों का घर बना देती है। सतयुग त्रेता द्वापर में ये एक अवगुण एक ही वर्ग में था, ब्राह्मण वर्ग में, और वो इतने छल कपट झूठ कपट के सहारा लेकर के अपना जीवन बर्बाद करते रहे और साथ में अन्य यजमानों को भी मिसगाइड करते रहे अपने लालच और लोभ में। वो विद्वान होने करके एक दूसरे की टांग भी खींचते थे, अपने आप को विद्वान सिद्ध करने के लिए चतुरता प्रयोग करते थे। परमात्मा कहते हैं कि इस विद्या में अवगुण बहुत है, लेकिन इसमें एक ही गुण है, इसमें एक ही गुण परमात्मा ने हमारे लिए रखा है कि हम सदग्रंथों को स्वयं पढ़ सकेंगे और उनके गुण रहस्यों को स्वयं समझकर भगवान पहचान लेंगे। और जब हम भगवान से परिचित हो जाएंगे फिर हमारे लिए शिक्षा भी हानिकारक नहीं रहेगी, माया की दौड़ नहीं रहेगी। भगवान हमें बगैर दो नंबर का काम करे ही बहुत ज्यादा धन देते रहेंगे, क्योंकि हमारी भक्ति मार्ग ऐसा है, तो फिर हमने किसी प्रकार का कोई विकारकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, तो वेद बताते हैं कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। कबीर परमेश्वर है, वो कबीर देव है, हम उसको कबीर साहब कहे हैं, कबीर देव कहो चाहे साहब कहो, राम कहो भगवान कहो, वेदों में उसे कबीर देव कहा है। कहीं पर कवि सीधा शब्द भी लिखा है तो वो कवि काव्यकार के लिए होता है, और एक भाषा भाषा का अंतर होता है। जैसे फारसी भाषा में कबीरन लिखते हैं कबीरन, या कबीरा लिखते हैं या खबीरा लिख देते हैं, तो वो परमात्मा के उस यथार्थ नाम की तरफ ही संकेत है। ऐसे ही कबीर देव वेदों में लिखा है। तो वो कबीर परमात्मा क्या लीला करता है ये तो वेद बता रहे हैं, और वो 600 वर्ष पहले ऐसी लीलाएं करके चले गए, सतयुग में की, त्रेता में की, द्वापर में ये लीलाएं की, ये ज्ञान दिया। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर का दिया हुआ ज्ञान नहीं रहा, अब कलयुग में फिर आकर परमात्मा ने दिया, वो ज्ञान समाप्त करवा देते थे ये नकली ऋषि, कबीर जी के ज्ञान को नष्ट करा देते रहे सतयुग त्रेता द्वापर तक। अब कलयुग में ये हमारे पास उपलब्ध है, कुछ दिनों में इसका भी ये विनाश करा देते। तो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने जो लीलाएं की कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक धर्मदास नाम के महापुरुष पुण्यात्मा थी कि भगवान के लिए भटक रहे थे, तीर्थ करते फिर रहे थे, श्री कृष्ण जी के पुजारी थे, उनको मिले यथार्थ ज्ञान दिया, फिर धर्मदास जी ने उसके बाद वो सत साधना की। वही परमात्मा दादू साहेब जी को मिले, राजस्थान के अंदर दादू साहेब जी थे जयपुर के पास, वहां परमात्मा आए, सतलोक से चलकर आए, 7 वर्ष के दादू जी बालक थे, बच्चों में खेल रहे थे, वहां उनको
एक बूढ़ा बाबा के रूप में मिले। सतलोक लेकर गए उसकी आत्मा को। पीछे से वो 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर। तीसरे दिन वापस उनकी आत्मा आई तो उन्होंने कबीर जी की कलम तोड़ महिमा गाई। ऐसे गरीबदास साहेब जी छुड़ानी गांव जिला झज्जर वर्तमान में हरियाणा, तो वहां परमात्मा सह शरीर आए, सतलोक से चलकर आए एक जिंदा महात्मा, बूढ़ा बाबा का हृदय एक जिंदा महात्मा के रूप में, जिंदा संत के रूप में। मुसलमान होते जिंदा, जैसे कोई अलग अलग वेशभूषा होती है उनको अलग अलग भेख बोलते हैं। जिंदा महात्मा होते हैं, एक ओवर कोट सा पहनते हैं काला सा घुटनों के नीचे तक का, एक अंडरवियर पहनते हैं, सिर पर एक टोप पहनते हैं, इस पर दाढ़ी और सिर के बाल बड़े बड़े होते हैं। इस वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो परमात्मा जिंदा के वेशभूषा में, गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, गौवें चरा रहे थे खेतों में, और भी बहुत से पाली गवाले थे। वहां गरीबदास जी आपको आकर मिले, सतलोक लेकर गए, वहां उन्होंने सब ब्रह्मंडों की जानकारी दी, अपनी यथार्थता बताई, वहां सतलोक में दर्शन दिखाए। गरीबदास जी के शव की अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी, चिता पर रख दिया गया था मृत जानकर, इतने में आत्मा वापस भेज दी परमात्मा ने। खड़े हो गए गरीबदास जी, फिर ये वाणी बोलन लग गए जो परमेश्वर ने उनके हृदय में फीड कर दी थी कबीर जी ने, तो वही वाणी आज परमात्मा कबीर जी की महिमा से ओतप्रोत है, गरीबदास जी के द्वारा लिखी गई, बोली गई, और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी महात्मा संत के द्वारा वो लिखी गई, आज हमारे पास उपलब्ध है। तो वो परमात्मा ऐसी लीलाएं करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं।

आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

जिसकी तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूं यह आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है यह आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो अब आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: और जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: सब किश तो है मेरे प्यारे।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है, 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।
1: ऐसे गुर को

कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, Southeast Calgary, near Stampede

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विद 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: हो जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है, यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसे भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी ले कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-6060 या विजिट करो www.punjabiradio.ca।
2: बरस काना मेरा मन पीना, बरस काना।

जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुर पूरा पायो पट भागी लिव लागी मेदन पर सहता है भंजन पर पीर निवारण कल सहार तोहे जस बक्ता कुल सोटी गुर रामदास तन धर्म तुझा अर्जुन हर भगता त्रम तीर गुर मत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार

0: अंगद पयो तत् शा तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छत्र गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परस के मथुरा अमृत बहन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैण।
1: सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो उर आद पुरख परतख लिखियो अक्षर मस्तक धुर प्रगट ज्योत जगमगे तेज भुव मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो कलयुग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतर हो
2: तेह जन जाचो जगत्र पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम सियो परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगयो बासना ते बाहर पै देखियत धाम सियो अपर परंपर पुरख सियो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम सियो मथुरा को प्रभ सब मैं अर्जुन गोर भगत कहेत पाए रहो मिल राम सियो अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महाशिव जो करी हुन भेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत

0: काल समुंदर पै रूप प्रगट हरे नाम उदारन बस है संत जस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जान्यो पयो ते संसार सोई तरन गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हर।
1: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो श्री गुर तैं बैठायो रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै असुर गेते भाग पापिन पीतर कंपै काटे सो पापिन नरों के गुर्राम दा जिन पायो शतर सिंघासन प्रथमी गुर अर्जन कौ दे आयो।
2: अजय गंग जल अटल सिख संग सब नावै नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर टुलै नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर बंस जगत जस संच रहो सो कवन कह श्री गुर मोयो
3: नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद सुख।

सहन सुसहज दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह तद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजण सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सजण सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबा जी तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी और रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबता कर कृपा पाखण हम तारी जन्म जन्म के लागे बेख मोरचा लाग संगत साध सवारी जा कंचन बैसंतरताया मल काटी काटत उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर और तारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हम मारी हर हर आगम अगाध बोधा अपरंपर पुरख अपारी जान का कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सवारी हर हर आगम अगाध बोगा अपरंपर पुरख अपारी
जान का कृपा करो जग जीवन, जन नानक पाज सवारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवह संत भगत तिनकी सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी आज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एमएंडआर रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। एमएनडीआर रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाच स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ली तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: हो जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैन लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 3232nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों गैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street North East Calgary।

काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव सतनाम।

होर केते राम रवार, कितिया कन कहानिया, केते बेद बीचार, केते नचहें मंगते, गिड़ मोड़ पूरहें ताल, बाजारी बाजार में आए कड़हें बाजार, गावहें राजे रानिया, बोलहें आल पताल, लख टकिया के मुंदड़े, लख टकिया के हार, जित तन पाई है नानका, से तन होवहें छार, ज्ञान ना गली टूंडी है, कथना करड़ा सार, कर्म मिले ता पाई है, होर हिकमत हुकम खुआ, ज्ञान ना गली टूंडी है, कथना करड़ा सार, कर्म मिले ता पाई है, होर हिकमत हुकम खुआ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी उचारण कीती हुई आसा की वार दी चौथी पौड़ी नाल जो हजूर ने दो श्लोक दर्ज कीते ने, इस पौड़ी दे पहले श्लोक दी विचार आपां कल कर रहे सी। उस श्लोक विच हजूर ने पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु जी दा जिहड़ा अदृष्ट पै हर चीज नू चला रहा है, उस दा हजूर ने जिक्र कीता। उस विच चलदी हुई पवन ए पार ब्रह्म परमेश्वर दे पै विच है, उस दे बनाए हुए नेम विच चल रही है। लखां दरिया ने धरती ते, हजूर कहिंदे ने इन्हां दरियावां दा प्रवाह ए भी परमात्मा वाहिगुरु जी दे पै दे विच ही चल रहा है। उस विच हजूर ने अग दा जिक्र कीता, धरती दबी हुई दा जिक्र कीता, बदलां दे वरसन दा जिक्र कीता,

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता, तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अति होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
3: कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

सन्मान योग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर आप जी हाजरी भर रहे हो। आप जितने हजूर दे चरणा विच उपस्थित हो प्यार अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो बख्शिश, फिर उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। जदों बैराग पैदा हुंदा है

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लेनी चाहते हो तो इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-453-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, Northeast Calgary।

0: इज्जत ओ परमेश्वर वाहिगुरु आप रखदा है, जिस पत रखे आप जिनू उन्हे रखना है। ते गुरमुख प्यारे ओ तां वड्डे वड्डे प्यारियां दी वड्डे वड्डे भगतां दी ते जदों भी उन्हां नू याद कीता ते ओ परमेश्वर वाहिगुरु जी ने उन्हां दी रख्या कीती आ। हर युग दे विच अपने प्यारियां दी पैज रखी आ, हर युग युग भगत उपाया पैज रखदा आया। राम राजे हर नाखस दुष्ट हर मारिया हर आप तराया। ते गुरमुख प्यारे ओ परमेश्वर वाहिगुरु अपने प्यारियां दी पत इज्जत रखदा है। गुरु पातशाह जी वचन करदे ने, अपने सेवक की आपे राखै आपे नाम जपावै, जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठतावै, सेवक कौ निकटी होए दिखावै, जो जो कह ठाकुर पै सेवक तत्काल होयावै। ओ परमेश्वर नूं जदों कोई याद करदा ओ अपने प्यारियां दी भगतां दी पत इज्जत गुरमुख प्यारो आप रखदा है। जिस पत रखै आप सो भवजल तरै, जिहदी पत इज्जत परमेश्वर ने रखी आ ते ओही भैदायक संसार रूपी समुंदर तों तर जांदा है।
1: भगत ज्ञानी तबा जिस कृपा करै,
0: ओ परमेश्वर वाहिगुरु जिहदे उपर आप कृपा करदा है ते उहनां नूं गुरमुख प्यारो भगत बना दिंदा है, उन्हां नूं भगती दे वल नूं ला दिंदा है। जिहदे ते ओह आप कृपा करदा है ओहनूं ही ज्ञान बख्श के ज्ञानी बना दिंदा है, ते जिहदे ते ओह आप कृपा करदा ओह तों ही अपना नाम जपा करके ओहनूं तपस्वी तपा बना दिंदा है। ते ओहदी कृपा तों बिना भगती नहीं कीती जा सकदी, ओहदी कृपा तों बिना ज्ञान दी प्राप्ति नहीं हुंदी, ते ओदी कृपा तो बिना परमेश्वर दा नाम नहीं जपया जांदा। जदों उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी कृपा हुंदी आ फिर ही भगती हुंदी आ, फिर ही ज्ञानवान पुरश हुंदा ते फिर ही तपस्या करदा है। ओ आप ही भगत बनाउंदा, आप ही ज्ञानी बनाउंदा, आप ही तपे तपीसर परमात्मा दा नाम जपण वाले बनाउंदा। ते गुरमुख प्यारो तप गुर सेवा तपा सिर तप सार, गुरु दी सेवा सब तो वड्डा तप है। गुरु दे दर ते कीती हुई सेवा जदों भावना दे नाल करदा ते गुरु दे दर ते प्रवान हुंदी है, इह सब तो वड्डा तप है। इस करके सतगुरु जी आप ही कृपा करके करवाउंदे हन।
1: सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै,
0: जिहदे उपर परमेश्वर वाहिगुरु आप बल बख्शिश करदा है। सो पूरा प्रधान, ओ पूरा प्रधान श्रेष्ठ मनुख हुंदा है। ते पूरे प्रधान कौन आ? गुरु साहब जी बाणी विच कहिंदे ने, पूरे ते प्रधान निवाव है प्रभ मत्था, जिहड़े गुरु दे चरणां दे विच आ करके सीस नवाउंदे ने। सतगुरु जी कहिंदे ओ पूरे प्रधान ने, ओ श्रेष्ठ पुरस ने, ओ चंगे पुरस ने। सो पूरा प्रधान जिसनों बल धरै, जिहदे उपर ओ आप बल बख्शिश रहमत करदा है,

0: अनुग्रह तो भाव गुरु ने कृपा की है, जिदे उपर वह परमेसर वाहिगुरु आप कृपा करता, मन दे विच कदे भी किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं हुंदा, जिदे ते उन्हें कृपा कर दी। अपने ते किड्डी कृपा की आ। आपां कई बारी किसी नूं कहने आ, तू भाई अमृत छकला, नाम जपला, गुरु घर आया कर, अगों जवाब मिलता जी जदों मेरे ते कृपा होगी मैं जप लूंगा। पर नहीं भाई, परमात्मा ने बहुत वड्डी कृपा की है। देखो सब तो वड्डी कृपा अपने ते वाहिगुरु ने की, मनुखा जीवन मिल गया। आ मनुखा जीवन यह बहुत वड्डी कृपा है। ते गुरमुख प्यारे पंजाब की धरती ते जन्म मिलिया, किड्डी कृपा है। सिखां दे घर दे विच जन्म मिल गया, किड्डी कृपा है। ते गुरु साहब ने तुरकी बाणी का खजाना बख्शिश कर दिता, किड्डी कृपा है। ये सतगुरु की कृपा है। ते गुरु ने तेरे ते कृपा बहुत कर दिती, पर प्यारिया हुण तू अपने आप ते आप कृपा कर। तू गुरु की शरण विच आउणा शुरू कर दे, गुरु दे चरणा दे विच आ, ते सतगुरु दीआं रहमतां हुंदीआं ने। कर अनुग्रह आप राख्यो, वाहिगुरु की जदों कृपा हुंदी आ, ओ प्यारिआं नूं अपनिआं नूं आप रखदा, ते उहनां दे मन दे विच कोई भी विकार जिहड़ा है ओ भाई नहीं पैदा हुंदा।
1: जिस प्राप्त होए सिमरै तिस दहत नह संसार।
0: जिनू वाहिगुरु परमात्मा का नाम प्राप्त हो जाता है, वह वाहिगुरु के नाम सिमरता है, वह गुरमुख प्यारे जिहड़ा दहत विकारां दी अग दे विच संसार दे विच ओ नहीं सड़दा।
1: सुख मंगल आनंद हर हर प्रभु चरण अमृत सार।
0: ओदे घर दे विच सुख मंगल खुशियां आनंद दे सहित हो जांदा है। कौन? जेड़ा भाई उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणा दे नाल, जेड़ा सानू मृत्यु तो रहत करन वाला परमेसर वाहिगुरु दा नाम है। गुरु दे चरण, गुरु दे चरण केड़े ने? गुरु दा शब्द, परमात्मा दा नाम, ते गुरमुख प्यारो इनू हिरदे दे विच वसाउणा है। जिन्हें गुरु दे चरणा नूं, गुरु दे शब्द नूं हिरदे दे विच वसा लिया, ते सतगुरु जी कहिंदे उहदा जीवन आनंदमय सुख दे सहित, खुशियां दे सहित हो जांदा है।

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: ये प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124 4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है, या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लेनी चाहते हो, तो इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11-2316-27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।

0: 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 है ये कहां से छपा है ये वेद? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। इन्होंने यहाँ लिखा है महर्षि दानंद सरस्वती कृत, लेकिन ये दानंद जी का अनुवादित नहीं है, दानंद जी ने अनुवाद नहीं कर रखा है, गलत लिखा है इन्होंने। चलो हम अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86। ये है मंत्र नंबर 26। इसमें क्या बताया है, अनुवाद किया है ये, इसमें मूल संस्कृत है, ये सारी मूल संस्कृत है। इसमें ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोलन लागे, वह को हम वह बोलते हैं, ये कबीर। यहां देखो इनके द्वारा अनुवाद है, ये किसी और ने किया हुआ अनुवाद। यज्ञ करने वाले यजमानों यानी भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ

विघ्नों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है, विघ्नों को नष्ट करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि भगवान का परमात्मा का वास्तविक रूप एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है, तो यहां हम चरम दृष्टि से उसको नहीं देख सकते। इसलिए वो अपने रूप का हल्का तेज पुंज का शरीर धारण करके, उसको हल्का करके यहां आता है अपने रूप को। इससे सिद्ध है कि साकार है भगवान। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यहां इन्होंने क्या किया है, इसमें यो हलंत वाला रह रह जाता है, अत्य अलग कर देते हैं ये अत्यो, कबीर अत्यो, रह छोटा हो जाता है, तो उस रह को इन्होंने यहां दो अपसर्ग में बदल दिया, तो ये कवि बना दिया। तो कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कवि का अर्थ काव्यकार तो हो सकता है लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वज्ञ तो परमात्मा ही होता। तो हम इसको, हम जैसे इसको हम कबीर देव लिख दें, वो कबीर देव, वह परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से चलकर वर्णीय पुरुषों को, यानी श्रेष्ठ भक्तों को, व्यक्तियों को प्राप्त होता है। अब 27 में ये क्या लिखा कि प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं, ये अनुवाद इन्होंने ठीक नहीं किया है, जो नाना रूप में स्थिति को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। अच्छा, प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकतेजो में परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, तीसरे पृष्ठ पर, ओह यानी वो तीसरे स्थान पर, ऊपर भाग पर विराजमान है, तो साकार है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है और प्रकाश रूप है। अच्छा, अब वो किस उद्देश्य से यहां आता है ये क्लियर करेगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 82 का मंत्र 1 से लेकर 3 तक हम आपको दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सर्वो उत्पादक प्रभु, यानी सबको, सबकी सृष्टि करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप और सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों का हरण करने वाला है, वह राजा के समान, राजा के समान देखने योग्य है, दर्शनीय है, राजा के समान दर्शनीय है, यानी साकार है वह प्रभु, राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुषों को, ओह वह श्रेष्ठ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता आ करके। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उत्पन्न वाला परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। आप देखो ना, जिस प्रकार वो परमात्मा कैसे मिलता, कि जैसे विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है तो वो विशेष किसी स्थान पर गिरती है, जैसे पहले, अभी वही स्वभाव है लेकिन अब काशी धातु रही नहीं, पहले काशी काशी धातु के बेले थाली होया करते थे, परात भी होते, बेले थाली ज्यादा होते थे, और उनको बाहर अगर वर्षा में रह जाते थे तो उनके ऊपर अमूमन कहीं ना कहीं बिजली अवश्य गिर जाती थी, आसमानीय बिजली, क्योंकि उसका उससे कोई विशेष कनेक्शन है जिस पर वो आकर्षित होती है। तो इसी प्रकार बताया है कि वो परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को मिलता है जो मिलने योग्य हैं, उनके लिए आ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, वो कुछ एक पुण्यात्माओं को विशेष रूप से मिले, उनको ही ज्यादा वो ही समझ सके उनको, बाकी वो टोल गिल 64 लाख तो चेले हो गए थे, वह बिना समझ सके, और अन्य जो ऋषि में ऋषि मंडलेश्वर गुरु आचार्य, और वह बिना मालिक को पहचान सके, तो उनके लिए आना ना आना बराबर होता है भगवान का।
तो विशेष उन्हीं आत्माओं को आकर मिलते हैं जो उनको समझ सकते हैं और उनका आगे प्रचार कर सकते हैं। जैसे बिजली अपने स्नेह वाले पदार्थ पर आकर गिरती है, इसी प्रकार परमात्मा भी उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। फिर किस उद्देश्य से आते हैं ये और देखिए आगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का आपने एक मंत्र पढ़ा कि वह परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है और वह वर्णीय पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त हैं, उनको उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। कैसे मिलता है? जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को प्राप्त आधार बनाकर प्राप्त होती है, उद्देश्य क्या है उसका आने का, परमात्मा का। अब दूसरा मंत्र है, यहां लिखा है कबीर वेदस्य। ये कबीर इस रह ऊपर लगा हुआ हाफ, तो इसका इन्होंने कवि शब्द कर दिया हटाकर रह। अब जैसे ये समझना जरूरी हो गया, आप देखिएगा ये यजुर्वेद है और इसको ये रह हटा करके दो अपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं। ये यजुर्वेद अनुवाद किया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, कंप्लीट 40 के 40 अध्याय अनुवाद किया है महर्षि दयानंद, इसका राइटर नहीं है, केवल अनुवाद करता है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है 40 के 40 अध्याय। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब इसमें दिखाएंगे आपको कि एक 36 नंबर अध्याय में ये स्पष्ट किया, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये है 6300 अध्याय यानी 36वां अध्याय। इसमें यहां लिखा है रिचे वाचम परपधे मनो यजु परपधे। ये यजु शब्द है यानी यजुर्वेद का जो ये ऊपर का हिस्सा हटाक है, जैसे इस पर यहां लिखा था ये यजुर्वेद है, ये रे हटाक है और यहां अपसर्ग लगा दी 36 में जाएगी प्रथम मंत्र में, ये प्रथम मंत्र में यजु। अब इसका अनुवाद करते समय दानंद जी ने क्या किया है, यजु को यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल ठीक किया। अब इस यजु को कोई नहीं समझ सकता, जबकि इसके साथ ये लिखना पड़ेगा यजुर्वेद है। जब ये यजुर्वेद लिखा जाएगा तो ऊपर रे लाना पड़ेगा, तो हम इसको यजुर्वेद बोलते हैं, यजुर्वेद अपने लोकल लैंग्वेज में। तो ऐसे ही कबीर देव ये अपसर्ग हटा दिए, हटाकर रे हटाकर अपसर्ग लगाने से जो कवि लिख दिया उन्होंने, तो हमने जब कबीर देव लिखेंगे तो रे ऊपर लाना पड़ेगा, तो हम कबीर देव कहने लगे, कबीर कबीर साहब, देव माने परमात्मा। तो ऐसे अब भ्रंश हो गया, इस कवि को हम कबीर कहने लगे। ये वास्तविक नाम है प्रभु का जो वेदों में प्रमाणित है, और इस यथार्थ नाम से ही परमात्मा यहां आते हैं, और इसी का यथार्थ ये वास्तव में यथार्थ नाम भी मालिक का यही है। जैसे सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनके उपमात्मक नाम है, उपाधि के नाम है। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम, शरीर का नाम अन्य होता है, और वैसे उनको प्रधानमंत्री लैंग्वेज डिफरेंस होने से प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनका शरीर का नाम कोई और, वास्तविक नाम और होता है, ये उपमात्मक नाम उपाधि के नाम। तो अब यहां कबीर देव को समझने में आसानी हो जाएगी, आपने भ्रमित ना हो गए। ये देखिएगा अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का इब आप दूसरा मंत्र पढ़ रहे हैं। यहां लिखा है कबीर वेदस्य, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे अध्यात्म में की यज्ञ को प्राप्त होते हो। परमात्मा भी कहते अपनी वाणी में पहुंचूंगा चन्ने एक मजन अपने के हेत एक सन में, और आप इन्होंने लिख दिया कवि, इसको कवि लिख दिया, हमने यह लिखना चाहिए ये कबीर देव है, कबीर देव कबीर साहब, जैसे भी आपको उदाहरण दिया था यजुर्वेद का। तो अब इसको हम अगर कबीर देव लिखा तो यह लिखना चाहिए हमने इसको पूर्ण करके कबीर देव, वो कबीर अगर इसी दीपसुद्धि हिंदी में लिखा तो कबीर देव लिखे,
और हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब, वो कबीर साहब हैं, आप कबीर हैं, आप कबीर साहब हैं, कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं। ये उसको कवि कहते हैं जो व्याकरण के मास्टर मानते अपने आप को, वो कहते हैं वो तो कवि है, तो आप ये सोच लिये वो कवि साहब है, हम उसको कबीर साहब कह दे, बोलने का अपन तरह है, वो वही परमात्मा है जिसका वेद गुणगान कर रहे हैं, जो काशी माया था जुल्हा रूप में शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके ही सोम आप हमको सुख दें। अब तीसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र 3, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए आप सर्वव्यापक नहीं आप हैं, आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। अपने आत्माओं गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, मुखे माने उनके मुखारविंद से, उनके मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, और उनको जानकर फिर आप पूर्ण रूप से यथार्थ भक्ति करोगे और आप फिर भ्रमित नहीं रहोगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, यानी तब तो तू भक्ति के योग्य होगा, भक्ति तेरी प्रारंभ होगी। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत और छोटे जलाशय में प्राणी की जितनी श्रद्धा रह जाती है, उसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म के ज्ञान को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करने के उपरांत, उस परम अक्षर ब्रह्म की स्थिति से परिचित होने के उपरांत, आपकी जो श्रद्धा हमारे अंदर रह जाएगी, अन्य भगवानों में रह जाएगी। पहले क्या होता था कि सभी साधन तालाबों से ही हुआ करते थे, जैसे सिंचाई भी तालाब से, पानी पीना भी, पशुओं को पियाना भी तालाब से ही होता था, तो इस प्रकार उसमें वर्षा हो जाए तो वो तालाब छोटा तालाब जलाशय होता था, वो भर जाता था, और यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाता है, और उस पर आधारित प्राणी भी संकट में पड़ जाते हैं, उनकी भी जान चली जाती है, प्यासे मर जाते हैं, और उन प्राणियों को फिर बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा जलाशय, बहुत बड़ी झील प्राप्त हो जाए, तो 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो उसका। तो कहा कि उसके पश्चात उन प्राणियों की आस्था श्रद्धा जितनी उस छोटे जलाशय में रह जाएगी, उसकी बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत, ऐसे ही तेरी श्रद्धा उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के उपरांत, उसके ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत, छोटे अन्य देवताओं में, भगवानों में, ऐसे तेरी श्रद्धा रह जाएगी। अपने आत्मा उस छोटे जलाशय में जो आश्रित थे, वो जल बुरा नहीं था, लेकिन वो अपर्याप्त था, उसकी अक्षमता बहुत कम थी। इसी प्रकार हम जिन भगवानों की साधना करा करते, वो बुरे नहीं थे लेकिन पर्याप्त नहीं थे, और अब हमने पूर्ण परमात्मा मिल गया, जलाशय मिल गया, कौन ऐसा नालायक से जो पाचन रहेगा। अब कोई MLA है और उसने कोई मुख्यमंत्री बनाता हो, समझ गई बात, इतना संकेत बतेरा, तो हमने जो उपलब्धि हो तो हम पाछे कैसे पीछे रहेंगे। तो इसी प्रकार इस अध्यात्म तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत आप जी की श्रद्धा अन्य भगवानों में आप बैठ जाएगी, वो बुरे नहीं लगते लेकिन वो मारे काम के कोना, हमने जो वस्तु चाहिए उनके पास है नहीं, तो ये ज्ञान से ही प्राप्ति होती है। अब वो सचिदानंद गण की वाणी सुनाएंगे आपको थोड़ी। अब जैसे आपने श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ा कि कलियों के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे, हर कित वेदों में दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं,
इसे से देख उन्हें वेद का ज्ञान नहीं था, उनको विश्वास नहीं हो पाया। ओम नाम का जाप वो जप जपा के छोड़ छाड़ दिया, फिर अपना जंतर मंत्र, क्योंकि देवी की उपासना का एक मंत्र हमने आपको दे रखा है, केवल उस एक मंत्र से कई वर्षों तक उसका जाप करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते, जिससे उनको उन सिद्धियों के आधार पर वो अन्य जनता से फिर धन इकट्ठा कर लेते थे, उन सिद्धियां दिखा उन वो यहां तक सीमित हो गए। फिर पुण्यात्माओं, आप जी को जो मंत्र दिए गए हैं ये पूरे निष्कर्ष यानी यथार्थ मंत्र है, जो प्रथम मंत्र है, तो आप जी ने इसमें एक का किसी का जाप नहीं करना है। जैसे डॉक्टर ने वैद्य ने एक चूर्ण बना रखा है और उस चूर्ण के अंदर उसने हर तरह की दवाइयां मिक्स कर रखी है, दो तोड़े फलाने चीज, दो तोड़े वो, दो, और उसमें से एक ने कोई खावे तो दवाई का काम ना करे वो रानी कर देगी, थोड़ा बहुत चाहे लाभ भी कर दो लेकिन वो रोग ना कटे, तो सभी को मिलाकर खाने से वो रोग नाशक होगी। तो इसी प्रकार वैद्य ने जो दवाई दी वो सही होती है। अब क्या बताते हैं परमात्मा सचिदानंद घन की वाणी, काछे भेक कहां वे भांडी, गट में बैठी दुविधा रांडी, नारी पांच पच्चीसों पूता, ता कारण फिरता रूता रूता, अजरी बजरी करें बियाना, जिन शब्द अतीत मैल नहीं जाण्या, दोती नेती नोड़ी कर्मा, इंद्री नाल चरावे बर्मा, गज कर्मी गुरु आई चेरा, धोवे आत कमल नित फेरिया, सट कर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे निकाई, पांचों मुद्रा करें बियाना, जासे भेद अगोचर जाण्या, चौरासी आसन बस कीने, अनरागी नी तत्न चीने, काम धेनु का कित है बासा, अमृत दूजे पर वे आसा, काम धेनु दो पियो साधु, दुर्लभ दे सतलोक अगादु, तीन सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली, चौथी सुन लंग है जन कोई, आवागमन बहुर ना होई, मेर दंड की बाट बताऊं, पैठ दरी बे अमृत ल्याऊं, अक्षर धाम की डोरी सूची, सोला संखी रामत ऊंची, मकर तार का मार्ग जीना, भेद अभेद शब्द घर चीना, सुन मंडल सतलोक बसेरा, बहोर ना हंसा कर है फेरा, सतलोक से सतगुरु आए, अनसा आन शब्द गुरमाए। अब परमात्मा जो है यहाँ तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, सच्चा ज्ञान प्रचार करने के लिए आते हैं, तो वो सतगुरु कहलाते हैं, सच्चा ज्ञान देने वाले, क्योंकि नकली गुरु घने होते हैं, इसलिए सतगुरु यहाँ लिखा है सचिदानंद घन की वाणी में, जो गरीबदास जी को परमात्मा अपना भेद बताया, फिर आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने आगे ये अमरवाणी लिपिबद्ध करवाई, उसको पढ़ रहा दास। सुन मंडल सतलोक बसेरा, बहुर ना हंसा कर है फेरा, सतलोक में सुन मंडल में सतलोक है सबसे लास्ट पॉइंट ऊपर, वो तीन चार लोक है, और उसमें सुन मंडल सतलोक बसेरा, और वहां जाने के बाद बहुर ने हंसा कर है फेरा, फिर वो लौटकर संसार में कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में जो आपने पढ़ा, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई और फिर कहा कि उसके पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जल जाने के बाद प्राणी फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मंडों की रचना की है वही पूजा के योग्य है, नथिंग एल्स। तो यहां उस सचिदानंद घन की वाणी में ये स्पष्ट है, सुन मंडल सतलोक बसेरा, सुन मंडल सुन मन ऊपर, और वहां पर सतलोक एक स्थान है, बसेरा है रहने की जगह है, बसेरा माने रहने का स्थान, और बहोर ना हंसा कर है फेरा, वहां जाने के बाद वापस यहां फिर कर नहीं आते। सतलोक से सतगुरु आए, अनसा आन शब्द बिरमाए, सतलोक से वो सतगुरु यानी परमपिता परमात्मा सतगुरु रूप बनाकर आए, ज्ञान देने के लिए स्वयं आए और अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण किया। बंदी छोड़ कबीर गुसाई, दरवे नूर झल में ले जाई, अदली आद कबीर प्यारे, जिन हंसा भौजल आण उबारे,
लख 84 बंधन तोड़े, अनरागी से चश्मा जोड़े, शब्द विहंगम सैन उदासी, सुनमंडल रहते अविनाशी। वो परमात्मा ऊपर सुनमंडल में रहता है, यही तो यथार्थ जो परमात्मा कबीर जी का ज्ञान बता रहा है वही हमारे वेद बता रहे हैं। और बीच में जो अड़ंगा हमारे भर दिया, भगवान निराकार है, ये है वो है, ये सारा बकवाद में रखी थी इन्होंने, जिनकी दंत कथा थी, लोक वेद था। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी, सूली ऊपर सेज लखाई, कहो गुरुदेव कौन विद जाई, तख्त हजूरी चाकर लाए, सतगुरु सत के दाग दगाए, सपत अंड पर धाम हमारा, जहां ओहंग सोहंग नहीं पसारा, जहां ब्रह्मा विष्णु वेद न बाणी, शेष महेश गणेश न जानी, जहां राम रहीम करीम ना कोई, अले अलेख इसम नहीं दोई, खुद खुदाई जहां ना भाई, तहां कहो किसकी ठकुराई, नो अवतार जहां नहीं कोई, शब्द अतीत रहे निर्मोही, कृत्रिम ख्याल सबक नहीं बाजी, वेद पुराण ना पंडित काजी, धर अंबर नहीं पावक पानी, अगम अगोचर अकत कहानी, जहां जीवन सीवन सुरत नरता, ज्ञानी गुणी मूड अनुसरता, बेगम पुरा ब्रह्मगत आदु, जहां दास गरीब विराजे साधु। अब इसमें क्या बताया है कि ये कच्छ भेग कहा बांडी, नाना प्रकार के वेशभूषा बनाकर घर त्याग कर चले जाते हैं और फिर दुनिया को भ्रमित करते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। धोती नेती न्योड़ी कर्मा, इंद्री नाल चलावे वर्मा, सौ पाखंड करते फिरते हैं ये लोग। धोती नेती न्योड़ी यानी ये जो क्रियाएं करते हैं ना, योगिक क्रियाएं करते हैं ये लोग, उनके बारे में। गज कर्मी गुरु आई कचेरा, धोवे आंत कमल नित फेरा। गज करनी होती है कि जैसे पानी पी कर दो तीन चार गिलास मुंह में और उंगली देकर ऐसे वापस कर देते हैं। कहते गज कर्मी गुरु आई चेरा, और दो में आंत कमल नित फेरा, यानी इससे आंतें साफ हो जाती हैं, और जैसे नाभि कमल है, पेट के अंदर नाभि कमल है, और इसको साफ करते हैं एक विधि से, अंदर अंदर अभ्यास कर लेते हैं और वो पेट को घुमा घुमा कर वहां जमे हुए मल को बाहर निकाल देते हैं। उस क्रिया का इतना ही लाभ है और उससे कोई लाभ नहीं, केवल शरीर को साफ करते हैं। देखिए जानते इसमें क्या कहा परमात्मा ने, गज कर्मी गुरु आई चेहरा, वो धोवे आंत कमल नित फेरा। फेरा माने घुमाया। आपने देखे होंगे कई योगी टीवी पर भी आते हैं और पेट को ऐसा घुमा देते हैं, पेट को ऐसे मुंह घुमा देते हैं, और उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, कमाल कर दिया, यूं तो तोड़ पाट दिया इसने। लेकिन उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है? उससे कहते पानी पीकर निकाल दिया, कुछ आंत साफ होगी, फिर ऐसे पेट की घुमाकर ऐसे ऐसे घुमाकर उससे में और जो मल था अंदर जमा हुआ उस आंतों में, उससे वो भी साफ हो जाए, बस इतना ही काम है इसका। इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं, ये तो एक शरीर को स्वस्थ रखने की विधि है। आगे देखना, षटकर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे ना काई। ये षटकर्म जो है ये भी तुम्हारे ऊपर बंधन है, तुम इनमें लागे रहोगे, भक्ति हो को ना फंड में बड़े रहोगे। और जो परमात्मा ने दिया हुआ शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, भक्ति करने से, उस परमात्मा की साधना करने से आपके ये रोग भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा का कहने का भाव ये नहीं है कि योग अभ्यास ना करना, और वहीं तक सीमित है जो वो व्यर्थ है उनका जीवन। पांचों मुद्रा करें बियाना, जासे भेद अगोचर जाना, 84 आसन बस कीने, अनरागी नीतत न चीने। ये 84 प्रकार के आसन होते हैं, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर लेना, शीर्षासन, और भी कई प्रकार के आसन है। कहते इन सबने भी कोई साध लेता है, सबका अभ्यास भी कर लेता है, तो उसका क्या बनता है? यदि उसके पास वो तत्व ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है। तीन सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। 84 आसन सिद्ध कर लिए, पांचों मुद्रा तैयार कर ली,
ये क्रियाएं भी कर ली, पानी पी कर निकाल दिया, पेट घुमा लिया। कहते आसन योग नाम बिन खाली। अगर आपके पास सत साधना नहीं है, ये सच्चे नाम की भक्ति आप नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारे योग और आसन करे हुए व्यर्थ जाओगे।

0: सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: ये दास इस क्रोथाकांड के अंदर झूठे केस में जेल में था। वहां अलग से एक चार कोठड़ियां थी जिनमें वहां आगे आंगन था और उसके अंदर एक नीम का पेड़ था और वहां एक बिल्ला आता था, एक बिल्ला बिल्ली का बच्चा, और वो उसको थोड़ा बहुत दूध डाल देते। वहां वो क्या करता था, दूध पी के और फिर उस पेड़ के सहारे न्यू खड़ा हो जाता, कभी खड़ा और उसके पैर लगा के ऊपर और न पूरा पेट की नो जैसे आसन से करता था, पूरे रूप से नो पेट लगा के नो पूरा और फिर उतरता, फिर दो तीन बार करता। और वो क्या करता था, वहां कोने में टट्टी होता था, फ्रेश होता था तो पहले पंजों से मिट्टी खोद लेता था, वहां फ्रेश होकर के फिर मिट्टी से पंजों से उसको मिट्टी से ढक देता था। तो वो पिछले जन्म में योगी था, पिछले जन्म में योगी था, ये क्रियाएं उसके इबी भी याद है और सूचे ढंग से रहता था। पहले हम देखा करते थे बहुत से व्यक्ति हमारे छोटे से अंत थोड़ा फ्रेश होकर के जंगल पानी फ्रेश होकर के और मिट्टी से ढक देते थे कि इसकी बदबू बाहर ना जाए। इस प्रकार के ये योगी पुरुष ज्यादा करते थे तो उनकी उस सच्चा नाम ना होने से आज वो उस बिल्ली की योनि में भटक रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं परमात्मा, तीन सुन में जम की जाड़ी आसन योग नाम बिन खाली। अब तीन सुन, इन तीन सुनों में जैसे काल के लोक की ये जैसे काल ने अपने ब्रह्मांड बना रखा है, ग्रुप बना रखा है ब्रह्मांड का, इनके बीच में एक वैक्यूम प्लेस होता है जिसको सुन बोलते हैं, वैक्यूम प्लेस खाली स्थान होता है। और फिर उसके बाद जो ब्रह्म लोक, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संघ ब्रह्मांड का आपस में संयोग है, उनके बीच में भी वैक्यूम प्लेस है, खाली स्थान सुन है, वो दूसरी। और तीसरी फिर परब्रह्म के और सतलोक के बीच में वैक्यूम प्लेस है तीसरी सुन, और चौथी सुन है वो परमात्मा सतलोक में। तो क्या कहते हैं, तीन सुन में जम की जाली आसन योग नाम बिन खाली, चौथी सुन लंघे जन कोई आवागमन बौर ना होई। अब आपको सुनाते हैं कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी आप मनमुखी नाम जाप करते हैं, तो उनकी न तो उनका कोई सुख होता है, ना उनकी सिद्धि होती है, न ही उनको कोई गति प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी ने श्रीमद् भगवद गीता में, इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, वो सूक्ष्म वेद में विस्तार से कही गई है, उनमें सारा विश्लेषण दिया गया है कि ये ना करनी चाहिए, ऐसे करते हैं वो ये गलत है, ये ऐसे करते हैं वो ठीक नहीं, और ये करनी चाहिए। गरीबदास जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया ताकि ये मेरा गवाह बनाए, तो संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को बहुत ही प्यारे शब्दों में हमारे लिए एक तोहफा छोड़ रखा है। क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेख कहावे बहुविध धुंधु धार मचावे, ये तीर्थ व्रत करे तरबीता वेद पुराण बट पढ़त है गीता, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलहदा यो भी वैदा। वैदा मीन यूजलेस, व्यर्थ है। कौन कौन सा व्यर्थ है, सट दर्शन सट भेख कहावे, ये गिरी पुरी सन्यासी नागा कनपाड़े नाथ वैष्णो कहते हैं, 6 प्रकार के सट भेख, 6 प्रकार के इनकी विधि है, सट भेख कहावे हैं। और इनकी साधना देखें धूम धूम धार मचा रहे हैं, कोई खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई उल्टा सिर करके कर रहा है, कोई कान पड़वा रहा है, कोई निराहार रहता है, कोई एक पैर ठाकर गर्दन में रख लेता है, खड़ा होकर साधना करा। नो दिखा आम आदमी ने भाई तो ढूंढा ठा रहे हैं भक्ति का, और उनके वो सारे डड़े ढो रहे हैं, क्योंकि ये पता चलेगा हमें सट दर्शन सट भेख कहा में बहुविध धूंधु धार मचा में, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। वेद पढ़े तीर्थ व्रत करें, वेद पढ़नी यार फिर ये डेढ़ है, उसने वेद समझे को ना, वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बातें पुराण। 18 अर्दड़ को अंधे पत्ते खोआवा, भूल गया सृजन हारा। वेद पढ़े और वेद समझा नहीं, और फिर वो उल्टी साधना कर रहे तो वेद समझे नहीं उन्होंने। तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, ये भी वेदा है। अब वेद पढ़ लिए, गीता जी का नित पाठ कर लिया, और गीता जी बता क्या रही है, श्रीमद भगवत गीता में वर्णन क्या है वो समझाने, तो वो पढ़ा हुआ पाठ व्यर्थ है। अब जैसे गीता जी में लिखा है ऐसा करने से लाभ होगा, इसलिए कहा कि ये भी वेदा है, ये भी व्यर्थ है। 4 संपदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ये 4 संप्रदायें बनी हुई हैं, और इन संप्रदायों में कहते निज नाम नहीं है। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उवा बाई बकदा। ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि सतयुग के ब्राह्मण, ये ऋषि कहो तो ब्राह्मण कहो, ये सारे उवा बाई बकदे हैं। ये परमात्मा की वाणी बता रही है, उससे पहले आप जी को श्रीमद देवी भागवत से प्रमाणित कर दिया, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 400 पृष्ठ पर और 6 सकंद में। वो क्या कहते हैं कि व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, बता। तो वही यहां परमात्मा कह रहे हैं ये माड़ा गाल हुए हैं मुक्ता, माड़ा गाल करते जे गली में। अब ये माला गले में डालने की बीमारी कहां से शुरू हुई, पहले क्या था ईबताम, ये अप टू डेट बाबूजी बनकर पेंट सेंट पे रहा, गोज भी कोई किलवा लेते जेब, पहले कोई कुर्ते नहीं हुआ करते ना पजामे, एक चादर लपेट लिया करते शरीर पे, धोती बांध लेते और उसी में से शरीर पे कर डाल लेते थे, जेब नहीं होती थी। और माला एक नाम जाप करने का एक साधन है, तो वो जाप करते इतने जाप करते फिर उस माला को गले में डाल लेते थे ऋषि मुनि, और वो भक्त जैसी भी साधना करते थे ओम नाम का जाप करते थे, उनसे उसमें कुछ शक्ति आ जाती थी, वो किसी को आशीर्वाद भी दे देते थे उनको लाभ हो जाता था, किसी कोई उनको खाना खिला देता वो आशीर्वाद देते थे, अपनी कमाई में से उनको कुछ वो बेनिफिट दे देते थे भक्ति का। तो आम जनता की मन की भावना की जिसने माला पहन रखी वो भगत आदमी है, और उस माला वाले की घनी श्रद्धा से सेवा करने लगे, गांव में आजा सब आज मारा रोटी खाइयो जी, आज मारा खाइयो जी, है तो वो न्यो आदर सत्कार शुरू हुआ। तो फिर बाद में कुछ पाखंडिया ने पाखंड शुरू कर दिया, जो माला डाला है उसकी पूजा होती है, तो नकली लोग भी माला डाल के घूमने फिरन लग गए। अच्छा फिर कोई दो दो डालन लग गया माला, दो माला डाल रहा, उन्हें सोचा बोली आत्मा होया करती सब डालो, उन्हें सोचा दोनों आता भक्ति करता होगा यो गुणा भगत, और दो चार चार गालन लाए गए वो और गणे भगत मान लिए उनकी पूजा कर लगी। तो ये कहते हैं परमात्मा कि माड़ा घाल हुए हैं मुक्ता, ये माड़ा गल में गालने से अपने आप को मुक्त समझते हो नहीं, और सट दल बाई बकदा, इन सट दला में ये 4 संप्रदाय कौन सी है, 4 शंकराचार्यों से जो चला है ना मार्ग, और इन 4 शंकराचार्यों का विधान आप पढ़ लो तो हंसी आवा अपने ईव अब आवे, पहले तो नहीं पता था। तो यहां ये बता रहे हैं कि सटदल उवा बाई बकदा, ये सटदल माने 6 प्रकार के जो भेख बना रखे हैं ये सब उवा बाई बकते हैं, इनको यथार्थ क्या नहीं है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने, ये वैरागी बने फिर कहते इनको वैराग का पता है कोई नहीं। अब इसके ऊपर आगे बताया है, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के ये दुंदु धार मचावे हैं। अब यहां क्या बताते हैं कि वैरागी बन गया बैराग ले लिया, घर छोड़ दिया, घर तो छोड़ दिया। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। सुखदेव ऋषि जी ने बाल ब्रह्मचारी रह करके और आकाश में भी उड़ने की सिद्धि उसको प्राप्त थी, सब जगह घूम भटक लिया, लेकिन उसको भी वस्तु नहीं मिली। जब तक संत नहीं मिले, पूरे संत नहीं मिले, उनको भी राहत नहीं मिली, कोई रास्ता नहीं मिला। क्या कहते हैं, तूने एक नारी त्याग दी। अब देखो भगत जो आदमी भक्ति करता है वो घर त्यागता किस लिए है कि मेरे मेरी पत्नी मेरी भक्ति में बाधक है। परमात्मा कहते हैं कि एक नारी तो त्याग दी तने, भक्ति में बाधक जान के। अरे ये पांच नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये पांचों नारी तेरे साथ रे, इनने त्याग, इनने चाहे तो तू घर में रह के त्याग और चाहे जंगल में बैठ के त्याग, तब मोक्ष प्राप्ति होगी। उस इनको ये त्यागने को बालकों का खेल नहीं, इसको त्यागने के लिए विधि है, यथार्थ मंत्र है, उनके जाप से कुछ दिनों के अंदर अपने आप शरीर में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होने लग जाएगी। आप चाहते हुए भी विकारों को उत्पन्न नहीं कर पाओगे, प्रेरित नहीं हो पाओगे, ऐसी स्थिति शरीर की बन जाएगी। तो वो मंत्र एंटीबायोटिक है, वो तने मिले नहीं, उनके ना मिलने से एक नारी त्याग दी और जंगल में चला गया। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी वो सैल वे। कहते हैं सुखदेव ऋषि बहुत घूम लिया, तुम तो पृथ्वी पर घूमते हो, वो ऊपर के लोकों में भी चला जाता था तो भी मोक्ष का रास्ता नहीं मिला उसको, मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुर नी चोट निशाने, ये बैरागी बैराग नहीं समझ रहे और बिना सतगुरु के चोट निशाने पर लगे नहीं, यानी यथार्थ ज्ञान यथार्थ भक्ति विधि सतगुरु के बिना मिले नहीं और तब तक मोक्ष हो नहीं सकता। बारह बाट बिटम्ब बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी, इन सठ दर्शनों में सिन्यासी गिरी पुरी नागा उगड़ और ये नाथ कनपाड़े सुखे नाथ, कहते इनमें भक्ति जन्म ठगने की है, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं बोली आत्माएं। बारह बाट बिटम बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। सन्यासी दस नाम कहावे, शिव शिव करे न संत से जावे, निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। देख कमाल कर दिया, कहती है सन्यासी जो है ये दस नामी होते हैं, ये शिव को भगवान मानते, ये ब्रह्म न भूल गए, ब्रह्म तक की साधना नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में यही निर्णय दिया है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन ये तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा जी सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उपासना करने वाले, इनका ज्ञान इस त्रिगुण में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हराया जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, ब्रह्म साधना भी नहीं करते। तो यहां परमात्मा अपनी वाणी में बता रहे हैं कि ये वैदा है क्या, सन्यासी दस नाम कहावे, शिव शिव करे ना सन से जावे, किसी का भी शंका समाधान नहीं है, किस कोई भी निरसंशय नहीं है, शिव शिव करते हैं लेकिन वो ब्रह्म की साधना भी भूल गए और शिव जी का यथार्थ मंत्र भी और है जो ये दास आपको बताता है। सन्यासी दस नाम कहावे, शिव शिव करे ना संशय, निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा, वो ब्रह्म लोक की साधना भी छोड़ दी, ओम नाम का जाप भी नहीं करते, ये भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, ये भी वैदा। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी, चल छिद्र की भक्ति ना कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे, यो भी वैदा है। ब्रह्म कर्म भैरो को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे, ब्रह्म कर्म आन उपासनाएं करते हैं, भैरों की पूजा करते हैं और सत शब्द साहिब नहीं सूझे, सच्चा नाम सत शब्द सच्चा नाम सतनाम और सच्चा साहिब परमात्मा तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, वो समझ में आया नहीं। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम नचीन्या गुण गुरु गुण हीना, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा नगन निरासा तनकु त्रासा पशु प्राणी समान समानी यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा। अब क्या बताते हैं नगन जो कति निवस्त्र रहते हैं नागा और ये जैनी लोग कहते हैं नगन ये भी निराश जाएंगे क्योंकि इनकी साधना ठीक को ना। नगन निराशा और तनकु त्रासा शरीर को त्रास दे रहे हैं गर्मी सर्दी सहन करते हैं नंगे फिरे प्रभ भगवान ने सर्दी दे दी दिमाग दे दिया अपने गर्म कपड़े पहन ले सर्दियां में भक्ति करे पीछा छूटेगा। एक बाबा जी ने बोला मैं अवधूत हूं। अच्छा अवधूत है ठीक है भाई। क्या उसने एक एक कपड़ा बांध रखा गोड्या तो ऊपर ऊपर का एक लंगोट और कुछ नहीं ले रखा जनवरी का महीना और वो बैठा रात ने मैं उठा वो छुड़ानी जा करते हम पहले वहां ये काफी आते हैं इस तरह के बनावटी से महात्मा और उसे दिन में बात हुई बोला मैं अवधूत हूँ। अवधूत का अर्थ है बिल्कुल नहीं वस्त्र रहना एक लंगोट और ये कपड़ा लपेट लिया कर पर्दे पे और वो सारी रात बैठा नू को डाडा लागे भक्ति कड़ा हो चीज पे और तो उठ के सोए जो और वो बैठा बरंडे में मैं उठा मैं बाबा जी क्या हाल है ना उसकी जबान खुला मैं मर रहेगा बेटी का बाप फिर चाय लाया बनवा के उसकी खातिर जब तक मुझे आदेश नहीं था नाम लेने का गरम गरम चाय लाया एक गिलास सारी पी गया गट गट मैं बोला कपड़ा वड़ा मिला ना ना ना ना कपड़ा नहीं वो ड्रामा कर रहा उस तरह उसने लोग पसंद करे भाई तो बड़ा दूत आदमी हर कुछ भी नहीं लेता तो भक्ति तो उसका याद रही ना जाडा याद रहा सारी रात सर्दी याद रही भक्ति नहीं हो सकती ऐसी बनावटी बातों। नगन निराशा तन कुंतरासा ये पशु प्राणी समान समानी कहते नंगे अंडो तुम तो पशु कुत्ता जैसे हुए भी नहीं वस्त्र फिरे सारा दिन तो अगले जन्म में तुम्हारी ये डिमांड भी पूरी हो जाएगी। हाँ अगले जन्म में कुत्ते बना देगा तुमने हांडी फिर वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले ये भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा। कहते हैं वेद पुराण अरे उनके ऊपर कथा कुथा बना दी पढ़ पढ़ भूले पढ़े लेकिन अर्थ नहीं खुले इनके अर्थ तुम समझ नहीं सके इसलिए ये सारा जीवन बर्बाद कर दिया। भूले जोगी रिधि के रोगी कान चरावे भस्म रमावे यो भी वैदा है व्यर्थ है तोड़े पाती आत्मघाती मूड अनाड़ी जड़ से तारी ताल मंजीरा मन नहीं थीरा बहुविद नाचे नाम न बाचे यथार्थ नाम का जाप नहीं करते और सौ पाखंड करते हैं। तपा आकाशी बारह मासी मौनी पीठी पंच अंगीठी यो भी वैदा है बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं और पांचों नार पीसों लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। अब कहते हैं ये वैरागी सन्यासी सेवड़े ये जो है शरीर पर राख लपेट ली माथे पर ला ली नरी मुंह पर ला ली हाथा के लपेट ली कहते हैं ये इस तरह के जो तुम आडंबर किए हुए हो इसे परमात्मा नहीं प्राप्त होता क्योंकि आपके अंदर वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सभी आपके अंदर उत्पात मचा रहे हैं। कंठी माला और मृग छाला सिर पैर जटा रखावे हैं ढोलक ताल झालरी पीटे हैं फिर ताना री री गावे हैं यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा वैदा क्यों जान्या हम सतगुरु भेंटे न्यो जान्या। गरीबदास जी से पूछा कि आपने इसको कैसे समझा ये वैदा है। गरीबदास जी कहते हैं मुझे सतगुरु मिल गए मुझे सतगुरु मिल गए कबीर परमेश्वर जी जो परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए सतलोक से चलकर मुझे वो मिले थे इसलिए पता चल गया कि ये वैदा है ये व्यर्थ की साधना है। कंठी ये क्या करते हैं जो वैष्णो परंपरा है विष्णु जी के उपासक वो तुलसी की लकड़ी की एक मनिया और एक धागे में बांध कर डालना है गले में उसको कंठी बोले हैं और उसी की परंपरा इस कबीर पंथ में घर कर रही है। वो भी उस कंठी के चपेट रहे हैं और माला गाली गल में। तो यहां बताते हैं कंठी माला और मृग छाला दो सिर पे जटा रखा हुए हैं और ढोलक ताल झालरी पीटे फिर ताना रेरी गावे। यो भी व्यर्थ है। मन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पढ़ावे हैं गुजबी रज का मरम न जाण्या भद्दर भेख बनावे हैं करुआ और कॉपी न लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं खुद जा कुत्ती गट में दुती फिर ग्रह द्वार आवे हैं। अब घर छोड़ दिया भगवान पाने के लिए नुगे घर त्याग कर जंगल में जा बैठा और फिर लगी भूख कड़ाके की फिर चला नगरी में दिए माई हैं। तो परमात्मा कहे फिर घर क्यों छोड़ा वो घर पर अपनी बनाई रोटी मिलने थी अपना खा और भजन करे पेट के लिए धंधा भी करता और अपना मालिक का नाम लेता। अब क्या बताते हैं करुआ और कॉपी न लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं। करुआ बोलना एक हाथ में लोटा ले लिया और एक तन पे एक लंगोट बस बनखंड गुफा बनावे हैं गुफा में जाकर रहने लगे। गुफा भी तो कि मैं वो किसी दिए बनाई होगी वह गर्मी सर्दी ना लगे उसमें जा पड़ा। फिर कहते हैं खुदा कुत्ती गट में दुती फिर गृह द्वार आवे हैं। वह भूख लगी जो फिर गृहस्थी का वरना गाद फैलाया के फिर घर किस लिए छोड़ा था। परमेश्वर आए थे कबीर जी उन्होंने हमें एक ट्रायल करके दिखाई थी रिहर्सल करी थी बताई थी एक एग्जाम्पल कोड किया था कि न्यू रहा करो अपना काम भी करे और गणे धन की जरूरत को ना और जब तेरा आठ लाग गए मान ले तू सच्ची दिल से भक्ति धर्मदान धर्म कर रहे हर कभी कोई किसी प्रकार का भी आपके ऊपर संसारिक व्यवहारिक कोई दबाव आवेगा खर्चे का तो ऐसे उसको भी दूर करूंगा मैं जैसे परमात्मा रिहर्सल करके दिखाई थी। परमात्मा कबीर जी के अपना कोई बच्चे नहीं थे ना पत्नी थी ना माँ बाप थे लेकिन एक रिहर्सल करने के लिए और हमें उदाहरण देने के लिए दो मुंह बोले मात पिता नीरू और नीमा और दो मुंह बोले बेटा बेटी जो मुर्दे जिंदे किए थे बालक लड़का और लड़की 12-13 साल के थे तो उनको अपने साथ रखा एक परिवार सा दिखाया खुद कपड़ा बुनते थे उससे जो इनकम होती थी उसको खुद भी प्रयोग करते थे और भंडारा साथ में धर्म भी करते रहते थे। और जब इन नकली लोगों ने परमात्मा की बेइज्जती करनी चाही झूठी चिट्ठियां लिख दी 18 लाख व्यक्ति आगे कबीर जी भंडारा करेंगे झूठा लिख दिया तो परमेश्वर ने उन 18 के 18 लाख को 3 दिन तक भोजन करा दिया अरबों खरबों रुपए खर्च हुए। तो परमात्मा कहते हैं अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहूंगा। तो घर त्याग कर जाने की बजाय परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम अपने घर में रहो अपना दैनिक कर्म करो लेकिन भगवान की भक्ति ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूं फिर तुम्हें मोक्ष होगा। खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं रण सिंगे तुरही तुतकारा फिर गागड़ बांग गुटावे हैं। बता अब ये बांग क्यों पीने लगे जंगल में जाने वाले बाहर जो घर त्याग जाते हैं क्यों पहले तो निकले बेचारे परमात्मा पाने के लिए श्रद्धालु आगे वो नाड़ी संत टकरा गए जो भी जिसका जैसा फिट हो गया उसने उसी रंग में रंग दिया फिर वो भांग इसलिए पिलाते हैं कि कहीं इनके बालक याद ना आ जाए भाग जाए यहां से उन्हें चेले चाहिए मनुष्य उनको व्यर्थ कर जाते हैं। काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं लोहागर और पुष्कर पर से वहां द्वारका दाग दगावे हैं यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा। काशी गया प्रयाग महोदधि और जगन्नाथ को जावे हैं और लोहागर और पुष्कर पर से द्वारा दाग दगावे हैं कहते ये भी व्यर्थ है। अपुण्य आत्माओं परमात्मा की महिमा से अपरिचित होने के कारण यदि हमें पहले अगर कोई ये बात कहता हमें ये ज्ञान ना होता कि जगन्नाथ में काशी में प्रयाग में महोदधि में लो अगर पुष्कर आदि जाना व्यर्थ है तो हमारी त्योड़ी चढ़ जाती हम नाराज हो जाते। अरीब हमारे गीसा गल है एक सच बताए रखिए कति वो तो व्यर्थ की पूजाएं थी डले डोवा थे जीवन खोआ थे अपने बर्बाद कर रहे थे। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध कवावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा वैदा क्यों जाने हमने सतगुरु बेटे नो जाने। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है अर्थात जो इन्हीं की साधना इन्हीं से मिलने वाली राहत के ऊपर दृढ़ हो चुके हैं और किसी की बात सुनने तैयार नहीं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दुष्ट कर्म करने वाले दूषित कर्म निकम्मे कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि वो मेरी भक्ति भी ना करते। अब यहां इसको उनको चार इकट्ठी चार गाली दी है राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख। पुण्यात्मा एक बार कुंभ का मेला भरा था और कुंभ पर्व का संयोग हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर हुआ।

आगा जो कति नंगे रहते हैं वो चले गए, उनका ग्रुप चला गया स्नान करने के लिए। सबसे पहले वो अर्की पैड़ी पे वो पहुंच गए, उधर पीछे से वैष्णो साधुओं का ग्रुप आ गया। अब वैष्णो ने देखा कि नागा पहले स्नान करने वाले हैं, उन्होंने आवाज लगाई कि नागाओ हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आ जाओ। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम नी वस्त्र है, हम कोई इच्छा भी नहीं रखते हैं, हम कपड़ा भी नहीं रखते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णो साधु कहने लगे तुम नंगे रहते हो पशु की तरह, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरीर फिरो बार मरो। अब नागा इतनी टार कड़े उठे थी उन पर, अब बताया ना बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, और पांचो नार पच्चीसो लड़के धुंधो धार मचावे हैं। इवो काम क्रोध, वो क्रोध रूपी राक्षस वो अंदर ही था, उसने बजा दी विसल,

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: गैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामां नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिवें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue Northeast Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो, 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street, North East, Calgary,

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानूं जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stampede Ground।

0: परमजीत तलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत तलाहा जी नु 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत तलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3232 32nd Avenue Northeast कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह जो सेवह तुध जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुध जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुध जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरी अनेक पढ़ बहु सिमरत शास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई। तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावै सोई थीसी। जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ। सब तेरी तू सब नी त्याया जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे। जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न को।

कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरण पैले निवासा, पानी पावक तिन है किया। पंक जो मोह पग नहीं चल, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पही परापत मानुख देहरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाओ जप।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहाओ सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारी, साहिब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद्ध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंब। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुरे रच दीनी।
कहूँ फूल राजा होए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाई अचंपव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलीश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दा

सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे ओ, सब तो हे बखाने ओ। दोहरा

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले।

लगे वाज्य आन हाद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो सलो

रहाउ रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई कहो पीखन दोय नैन संतोखे जह देखा तह सोई रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई।

0: कैलगरी चौबी घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street, North East, Calgary,